मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नौवीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: लीजिए, सुनिए अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।
1: करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्दों में सुनिए।

कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है।

और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ।

संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना हमने ली है राजेंद्र जैन की आवाज़ में।

वंदना कार्यक्रम के आखिर में सुनिए नरेंद्र चंचल की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए चैतन्य गुरु जी से। विषय है सकारात्मकता।
1: सकारात्मक सोच का मतलब सिर्फ हम बातों में ऊपर के लिए करने का नहीं है, जो हमारे अंतरतम गहराइयों में जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, उसके अंदर में बदलाव लाना। आज हम जो कुछ भी हैं, चाहे हमारा व्यवहार, चाहे हमारा रिश्ते, जो कुछ भी हमारा साथ में जो कुछ भी चल रहा है, उसका मुख्य रूप से कारण हम खुद स्वयं हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड। ये एटीट्यूड को अगर हमको समझना है तो जब हम मौन में रहते हैं, शांत रहते हैं, तब हमारे अंदर में जो विचारों का श्रृंखला चलता है, विचारों का श्रृंखला किस आधार पर है, इनको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ये किसी दूसरे को बताने के लिए हैं और दूसरे के साथ में व्यवहार करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक आर्टिफिशियल हो गया। नहीं, हमारा जो विचारों का श्रृंखला है किस तरह चलता है, हम अकेले में उस स्तर पर जहाँ पर विचार शुरू हो रहे हैं और वो विचार किस किस्म के हैं, इनको हमें पहचानना होगा। इस तरह पहचान करके अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हर कोई शक शक शक नज़र से दूसरे को देखता है और कुछ खो दे रहा हूँ ऐसा सोचता है, और हमेशा दूसरे से पाने के लिए और कुछ भी दूसरे को ना देने का एक व्यवहार बहुत बड़ा नकारात्मक सोच बन गया। और मोर देन 50-60% जो घरेलू महिलाएं हैं और उनके अंदर में डिप्रेशन पाया जा रहा है, इन सब का कारण नकारात्मक सोच है। क्या होगा, कल क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह की हमारा सोच ऐसा नेगेटिव अप्रोच में बढ़ता जा रहा है। अगले पल में क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, अगर हम सोचते हैं तो ऐसा ही होगा, तो ऐसा ना हो ऐसा नहीं, जो चाहिए वो हमको चाहत उस पे प्रति बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, मैं लेट दफ्तर नहीं पहुंचूं, इसका मतलब डेफिनेटली मैं दफ्तर लेट ही पहुंचूंगा। फिर हमको

0: कैसा बदलना होगा इसको। मैं दफ्तर टाइम पे पहुंच गया, मैं दफ्तर में पहुंच गया और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस तरह सकारात्मक सोच बदले, तो ये मुख्य रूप से ध्यान के माध्यम से संभव है। इस तरह हम अपना मेंटल एटीट्यूड को हमारे प्रति और परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जो हमारा देश के राष्ट्र के प्रति, ये जो सोच है, हर कोई व्यक्ति दूसरे को दोष देने में लगा हुआ है। सिस्टम ठीक नहीं है, बच्चे बिगड़ गए, माहौल बिगड़ गया, ये सब दूसरे को दोष ठहराना बहुत आम बात हो गई। लेकिन हकीकत में बिगड़ा हुआ कोई दूसरा नहीं है, हमारे अंदर में ही है। ये कब पहचानत में आएगा? जब मैं अपने आप को देखूंगा और मेरा विचारधारा को। इसके लिए मौन बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए हम कुछ देर के लिए, 24 घंटे में 5 मिनट के लिए ही सही, आप जो ध्यान का प्रक्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय में अपना विचार श्रृंखला को आप देखें और उसके बारे में सोचें। अगर मेरा विचार श्रृंखला अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में बदलना है, और तब हमारा जीवन बदलेगा और समाज बदलेगा, देश बदलेगा।
1: अभी आपने चिंतन सुना चैतन्य गुरु जी से। विषय था सकारात्मकता। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिया रवास्ते कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, असली नकली खाद की पहचान कैसे करें। खेत खलिहान में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे मूंगफली की उन्नत खेती विषय पर। चौपाल में संध्या 7:00 जानकारी के विषय रहेंगे राजस्थान की विरासत सोनारगढ़ का किला, खेती में पशुधन की उपयोगिता, हरी खाद ढेंचा व उसके फायदे, गीत भी सुनवाए जाएंगे, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। लोक भजन आप सुन सकते हैं 7:15 पर। मोरमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगी मीनाक्षी शर्मा। मानस गान आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर, भाग संख्या होगी 259। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30। दिन में 11:00, दोपहर 2:30। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे 12:05 पर। फिल्मी भक्ति संगीत का समय रहेगा 7:45। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:00। आकाशवाणी सूरतगढ़ द्वारा आयोजित

पूर्ति लोक संगीत संध्या की रेडियो रिपोर्ट कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे सुबह 10 बजे। इस कार्यक्रम के संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया।

0: इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसाङ्ख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत्।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारनेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्णे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, LPG इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं LPG इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि LPG वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य, तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समी

0: शिक्षासभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्रशिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुःसप्ततिसहस्राधिकैकलक्ष क्विण्टल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7-0 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तरह बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत

नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: celebrations at the Kala Academy in Panaji today. The occasion marks Goa's journey from liberation to becoming one of India's leading states in terms of human development and quality of life. Israeli troops entered the southern Lebanese village of Dibain near Marjayoun yesterday, pushing deeper into Lebanon, even as military officials from both countries held rare direct talks in Washington. The move came amid fresh Israeli airstrikes that killed at least 6 people. Lebanese state media reported that 5 people were killed in strikes on Deir Kanun al-Nahr and Abbasieh, while a municipal policeman died in a separate strike on the village of Ebba. At the same time, a 6-member Lebanese military delegation met Israeli military officials at the Pentagon in the first direct military talks between the two countries in decades. In sports, India continued its impressive performance at the Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, taking its medals tally to 8, including 4 gold, 2 silver and 2 bronze, and climbing to the second place in the standings behind China. On the second day of the competition yesterday, Indian athletes won 7 medals, including 4 golds. The standout performance came from 19-year-old Pooja Singh, who clinched the gold in the women's high jump with a leap of 1.93 metres. India's other 3 gold medals came from Nitin Gupta, who won the men's 5,000-metre race walk, while Amanat Kamboj topped the women's discus throw and Rahul Jakhar backed the yellow medal in the men's decathlon. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेतिया रवास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है, असली नकली खाद की पहचान कैसे करें।
2: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम।
3: राम राम मुकेश भाई, राम राम राम राम। और सुनाओ मुकेश भाई, क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया रामेश्वर भाई, बस लाग रहे हैं खेत क्यार के काम धंधे में।
3: बढ़िया बढ़िया। और अब देखा नहीं तो अब मौसम जो है वो बदलने ला रहे है, और आपने हाड़ी की जी फसल है ना, आपने जो भाई लोग है बे लगभग सामने में लाग रहे है।
2: जी बिल्कुल रामेश्वर भाई, अब आप देखने ला रहे हैं कि लगभग किसान भाई है जका आपकी फसलें जकी सामली है, आगे की फसल की बीज आंत जकी बिंगी तैयारी भी शुरू कर दी है।
3: क्योंकि अब देखा नहीं तो आपने जगह कणगी जी की फसल है बा लगभग कटाई हो चुकी है, लेकिन तूड़ी ताड़ी वालों तो काम धंधा नहीं मुकेश भाई, अजय की थोड़ो बहुत बाकी पड़े है।
2: बिल्कुल रामेश्वर भाई, और वो काम धंधो तो देखो जी यही चाल तो ही रहनो है। हाँ, हाँ। सागे सागे रामेश्वर भाई थारकनु कई जानकारी लेनी थे, मार में श्याणा मीने खो सोचे हो जानकारी थारू ही ले लिया।
3: मुकेश भाई श्याणा तो थे भी हो, लेकिन जानकारी की अगर बात पूछनी है ते पूछ सको, और पूछो के पूछना चाहो
2: रामेश्वर भाई। सहसू पहला तो मैं थारसू आ बात पूछना चाहूँ की जी आप खेती करा तो भी मैं खाद को उपयोग करा।
3: बिल्कुल।
2: और खाद के उपयोग का मां अब अपने बेरो कौन लागे नहीं कि किसी खाद असली है और किसी नकली है, तो वो आन दिना में की चर्चा में रेवे कि आ खाद तो भाई तू नकली लिया हो या असली खाद है, तो बिंगी पिछाण किया करा
3: मुकेश भाई का। अब लाला दिना भी आप एज की शिकायत है और एज की कमियां है, आप सुनी और देखी भी आपने जो किसान भाई लोग बताने ला रहे हैं नकली खाद जी की है बा ला रही है
2: जी,
3: तो इंग जी पिछाण है नी बा अपन करनी जरूरी है, तो इंग पिछाण आपा किया करनी है जी आपा डीएपी जी की है बा खेत का मां बरताइया।
2: हां बिल्कुल, डीएपी आपा लगभग फसल में उपयोग में लेवाइया।
3: मुकेश भाई जे डीएपी की आपा पिछाण करनी है नी भी असली है कि नकली है, तो इंग लिए सबसे पहली आपा जो को तरीको अपनाना वो ये है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना भी हाथ में लेगे और बा मां चुन्नो जो को है वो मिलागे और बिने मसलनो चाहिए हथेड़ी के ऊपर, बिंग मां जे तेज गंध आण ला जाए सोर मान ला जाए और आपा बिन सूंगे देखा तो यहाँ समझाना चाहिए आ डीएपी जकी है बा एकदम असली है।
2: यानी कहना मतलब है कि जे सूंघणो ही मुश्किल हो जावे इतनी तेज गिंद आवे बिमा तो बा इंगो मतलब असली है।
3: हाँ बिल्कुल असली है, आ एक पिछाण है। और इंगा अलावा एक और पिछाण है मुकेश भाई।
2: के पिछाण है भाई बता दियो।
3: बा पिछाण आ है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना है बे धीमी आंच पर अपने तवे के ऊपर गर्म करना है, जो को रोटी पोन वाला तवो है
2: जी,
3: बिंग ऊपर आप गर्म कर लेवा, जे ये दाना फूल जे तो समझानो चाहिए है कि आ डीएपी जकी है
2: असली है।
3: हाँ
2: और इंग अलावा और कोई पिछाण है तो बा भी बता दे रामेश्वर भाई।
3: बिल्कुल एक और पिछाण है बा भी सुन लो थे, डीएपी की जिकी असली पिछाण है नी बा आप भी है मुकेश भाई के, इंगा जका कठोर दाना भूरे काले और बदामी रंगा हुए और नाखून शू बे आसानी से टूटे को नहीं, आपा बिन मसल गए या तोड़ के दिखा तो
2: ठीक है, तो यूं आप पिछाण सका कि आ डीएपी असली है और नकली है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: इंगा अलावा रामेश्वर भाई आप पोटास को उपयोग करा फसल में?
3: बिल्कुल करा।
2: तो इंगो और बता दियो माने कि इंगो माने किया बेरो लगे कि

0: नकली पोटास है या असली पोटास है?
1: इन चीज की भी पहचान आप कर सका या पोटास चीज की असली पहचान है बोइंगो स्पेस जो को कड़ाकू है वो आप मान सका। इनके अलावा मुकेश भाई आपने एक और पहचान है का आप असली पोटास की जो की पहचान है बकिया कर सका। पोटास पानी में घुलने पर इंगो जो को लाल भाग है वो हमेशा ऊपर लपा से तैरतो रहे।
0: ठीक है रामेश्वर भाई, इनके अलावा आप बात करा सुपर फास्फेट की, तो सुपर फास्फेट की असली नकली की पिछाण आप किया करा?
1: सुपर फास्फेट की भी असली नकली की पहचान मुकेश भाई कर सका। सुपर फास्फेट की असली पहचान आ है कि इंगा सख्त दाना जका है अंगो जो को रंग है वो भूरो काड़ो और बादामी रंग हुए।
0: ठीक है।
1: और इंगा अलावा सुपर फास्फेट का कुछ एक दाना तो है पर गर्म करना पर जे ए दाना ना फूले तो समझानो चाहिए का आ असली सुपर फास्फेट है।
0: असली सुपर फास्फेट रामेश्वर भाई, इंग एक पिछाण आ है कि इनमें ज्यादातर जगह है वो डीएपी और एनपीके को मिश्रण बिंगी मिलावट हो है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: इंगो आपा पिछाण करके हैरापा असली नकली की पिछाण कर सका।
1: बिल्कुल आप भी एक बहुत बढ़िया पहचान है। और इन त्रियांशियों आप अगर आपने जी की असली नकली खाद है भी पहचान कर गए यार खेत में ना खानी तो आपने जी की फसल है बा भी मुकेश भाई बहुत बढ़िया हुआ है। और आपने जो को पीसो टक्को लागू रहनी वो भी एड़ो कौन जेनी
0: बिल्कुल सही बात है रामेश्वर भाई।
1: पण है। अब तो खेत का काम धंधा मैं और थे और भी करना है तो क्यों ना चला।
0: चलो सा,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा,
1: सा राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
2: खेती रावास्ती कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे, असली नकली खाद की पहचान कैसे करें। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन, कलाकार हैं राम जस वाल्मीकि।

अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, कलाकार थे रामजस वाल्मीकि। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 259।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवीं भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विशास से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 259। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन माता पिता को नहीं बदल सकते। अगर हम अपने बुजुर्गों से कटते हैं, दूर होते हैं, जिस प्रकार पेड़ जड़ से कटकर सूख जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में सुख शांति और स्वाभिमान नहीं आ सकता। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं, उन्हें सहेजने की ज़रूरत है। अगर परिवार में स्थायी शांति चाहते हैं, तो हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण आजकल हम समाज में देखते हैं कि बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जिसके वो हकदार हैं। वे हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों की कदर करनी चाहिए और बुजुर्गों को पूर्ण सम्मान देना चाहिए। दुनिया में सबसे फायदेमंद अगर बात है तो वह है बुजुर्गों के पास बैठना। कुछ ही पलों के बदले में वो हमें बरसों का अनुभव दे देते हैं।

बालिका शिक्षा से समाज में बदलाव आता है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बालिका शिक्षा से समाज में बेटा और बेटी में असमानता में कमी आती है। शिक्षित लड़कियां अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से कर पाती हैं। बालिका शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। कुछ एनजीओ भी बालिका शिक्षा के लिए कार्य करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसमें बेटी की पढ़ाई के साथ साथ लिंगानुपात की असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। बेटियों की शिक्षा के मार्ग में हमारी सामाजिक सोच भी बाधा डालती है, क्योंकि हमारे समाज में बालिका की शिक्षा के बजाय लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे आज भी बहुत सी लड़कियां पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। वर्तमान समय में इस सोच में काफ़ी कमी आई है, फिर भी समाज को बालिका शिक्षा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी एक बेटी पढ़ती है तो इससे दो परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दोस्तों, वृक्षों को जीवनदायी माना जाता है क्योंकि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक तत्व यानी शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को

सोख कर पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। पेड़ वायुमंडल से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को कम करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को धीमा करते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा ये बादलों को आकर्षित करते हैं और बारिश लाने में भी मदद करते हैं। मानव जाति से जीव जंतुओं तक सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फल, अनाज और सब्जियां पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। नीम, तुलसी और पीपल, अश्वगंधा जैसे हजारों पेड़ पौधे आयुर्वेदिक और आधुनिक दवाओं के मुख्य स्रोत हैं, जिनसे रोगों का उपचार होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर बांधे रखती हैं, जिससे भूक्षरण और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है। जंगल में बड़े बड़े पेड़ अनगिनत पक्षियों, जानवरों और कीट पतंगों का प्राकृतिक घर होते हैं। वृक्ष प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो निस्वार्थ भाव से सभी के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखते हैं।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko workout karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
5: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को

0: विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2रे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार

0: मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में द कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से

0: shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नजर एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बौद्ध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदामात का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
2: आदाद और शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जच्ची के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जच्ची के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में खवातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन खवातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले यह 33.3% थी, जबकि अब यह तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: म्यांमार के सदर मिन होंग ह्यांग भारत के

0: पांच रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ्द भी होगा जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: म्यांमार के सदर यू मिन आंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तिराती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामाजगारों से बात करते हुए दाते खारजा के तर्जुमान रणजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे जिसका मकसद ताजिरों और सनतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायज अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणि अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश

0: की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीम शान इम्तजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय ज़ियाफ़त का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फ़ख्र के मामले में अपना तआवुन जारी रखेगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज़्यादा मौसर तरीके से निमटने के लिए सरहदी मुहाफिज़ फोर्स BSF को इजाफी जिम्मेदारियाँ देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में BSF एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटजिक एतबार से अहम दो नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि BSF के क्याम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के BSF के नज़रिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ता नज़र को इलाकाई सलामती के नए नुक्ता नज़र से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के क्याम को मुतारिफ़ कराने का ऐलान किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। IMD ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में झालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। IPL क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्रा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जरी सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजाना प्रताप ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्म इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकानमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतादिन निकात पर इतफाक राय में पेशरफ्त हुई है, नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र के इंतकाल पर उर्दू दुनिया और उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताज़ियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजारा

0: जारी रहने के पेश नज़र LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बौद्धगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भजन। कलाकार हैं गोपाल भारद्वाज।

0: अभी आप भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
1: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमीशनिंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य

0: सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया। उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया। इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुईं, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
1: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के

0: पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटन्स ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। आज की हमारी कलाकार है मीनाक्षी शर्मा।

मुरमंगल कार्यक्रम में अभी आप मीनाक्षी शर्मा की गई लोक रचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं, शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं अधिकार फिल्म का नगमा। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं, गीत रमेश पंत ने लिखा है और संगीत आर डी बर्मन का है।

ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं गॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है भाभी, गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और संगीत चित्रगुप्त का है।

आप सुने मेरे सनम फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ द्वारा आयोजित नवतिपूर्ति लोक संगीत संध्या के संपादित अंश। इस कार्यक्रम के संयोजक है नवीन सिसोदिया। जिन लोक गायकों ने इसमें भाग लिया, बुंदू खान लंगा एंड हबीब खान पार्टी, शहनाज मंथन डावरा, तबला पर संगत की मनप्रीत सिंह ने, मटका वादन कृष्ण जूलिया का, और वाचक स्वर गुलशन मेघानी का। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग देवेंद्र रोकना और नरेश कंबोज का है।

0: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा नवतिपूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी सूरतगढ़ द्वारा लोक संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बुंदू खान लंगा, स्थानीय लोक कलाकार शहनाज खान और मंथन डावरा ने अपने गाए लोकगीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस लोक संगीत संध्या का आयोजन 24 मई 2026 को किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे आकाशवाणी सूरतगढ़ के उप महानिदेशक आर एलसवाल, साथ ही शहर के विभिन्न गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस आयोजन के शुभारंभ की घोषणा आकाशवाणी सूरतगढ़ के उप महानिदेशक आर एल असवाल ने की।
1: आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित कलाकार साथियों, संगीत प्रेमियों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज का यह अवसर केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जनमानस की स्मृतियों, भावनाओं, परंपराओं के उत्सव का अवसर है। हमें अत्यंत हर्ष और गर्व है कि आकाशवाणी अपने गौरवपूर्ण 90 वर्षों की यात्रा का उत्सव मना रही है। इसी श्रृंखला में आकाशवाणी सूरतगढ़ द्वारा आयोजित यह लोक संगीत संध्या हमारे लोक जीवन की आत्मा को समर्पित एक सुंदर प्रयास है। आकाशवाणी के 9 दशकों की अपनी यात्रा में केवल समाचार या कार्यक्रमों का प्रसारण ही नहीं किया बल्कि भारत की विविध भाषाओं, बोलियों, लोक कलाओं और सांस्कृतिक धरोहरों को जन जन तक पहुँचाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। रेडियो की मधुर तरंगों ने गांवों की चौपालों से लेकर शहरों की गलियों तक, खेतों से लेकर सीमाओं तक हर दिल में अपनी जगह बनाई है। लोक संगीत हमारी मिट्टी की खुशबू है। यह हमारे श्रम, उत्सव, विरह, प्रेम, आस्था और जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति है। राजस्थान की धरती को विशेष रूप से लोक सुरों की यह धरा है। यहाँ गीत केवल गाए नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। मांगणियारों की तान, लांगाओं की स्वर लहरियाँ, ढोलक करताल की थाप, ये सब हमारी संस्कृति पहचान के अमूल्य स्वर हैं। आज की यह संध्या उन सभी लोक कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी साधना से हमारी परंपराओं को जीवित रखा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग देने वाले सभी साथियों, श्रोताओं और संगीत प्रेमियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आइए आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरव यात्रा को हम सब मिलकर संगीत, संस्कृति और लोक संवेदनाओं के उत्सव के रूप में मनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लोक संगीत संध्या आप सभी के हृदय से मधुर स्मृतियां छोड़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
0: इस सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद कलाकारों ने पारंपरिक राजस्थानी वाद्य यंत्रों को बजाकर श्रोताओं का मन मोह लिया।

केसरिया बादम, गोरबंद, निम्बुड़ा जैसे लोकप्रिय लोकगीतों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोलक, हारमोनियम और खड़ताल की मधुर धुनों ने पूरे वातावरण को लोकरंग में रंग दिया।

0: इस कार्यक्रम का मंच संचालन राजेश चड्ढा ने किया।
1: जब इस धरा की बात होती है राजस्थानी की बात, चूंकि राजस्थानी लोक संगीत की बात है, लोक समारोह की बात है, इस धरा की जब बात होती है, राजस्थान की जब बात होती है, तो शौर्य की बात उसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसीलिए यहां ये बात कही जाती कि इन धरती पर गाज तो बादल थोड़ो लज, इन धरती पर गाज तो बादल थोड़ो लज, पानी वो काई पिए रगत पियोड़ी रज। इस शौर्य के साथ ये मिट्टी जुड़ी हुई है और उसी शौर्य के साथ हमारा समारोह जुड़ा हुआ है। एक गीत है विवाह की परंपराओं से लिया गया, क्योंकि हर जो विवाह के हर परंपरा के साथ में ना हमारा संस्कार ऐसा है, हमारी प्रवृत्ति, हमारी संस्कृति ऐसी है कि जितने संस्कार है उतने लोकगीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हर समय पर एक लोकगीत अलग, तो विवाह और शादी के लिए एक लोकगीत जला या जलाल जिसको हम कहते हैं, तो वहां ये बात रहती है कि जब विवाह तय होता है, बारात आ जाती है, बारात घर में बारात पहुंची है, तो लड़की के परिवार से उस दूल्हे को देखने के लिए सहेलियां सखियां पहुंचती हैं, तो उन बातों को लेकर के लोकगीत में वो बात कही जाती है। वो गीत है जला।

एक श्रृंगार का गीत है राजस्थानी का, मूमल जिसे हम कहते हैं, जो मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा है, जो किसी गलत फहमी की वजह से अंततः जो दुखांत होता है प्रेम कथाओं में, चाहे वो हीर राजा का हुआ कि लैला मजनू का हुआ, ठीक वही बात मूमल और

महेंद्र के साथ में होती, जैसलमेर और अमरकोट की बीच की वो कथा है। अमरकोट वो जगह जो इस वक्त पाकिस्तान में फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, उन दोनों के प्रेम की ये कथा है। और श्रृंगार में नक्षिक वर्णन की जो एक परंपरा है हिंदी साहित्य में, राजस्थानी साहित्य में, उस नक्षिक वर्णन का एक प्रतीक है मुमल गीत। भाई बंदूक

कल्पना करें कि एक नवोदित कलाकार और वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी रेडियो के गरिमामय मंच से। एक तो आधा तो व्यक्ति वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसकी पीठ के पीछे जब बंदूखा जैसा कलाकार बैठा हो और वहां पर इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दे देना, ये वाकई शहनाज के लिए अद्भुत बात है। एक और प्रस्तुति शहनाज की इसी क्रम में, एक श्रृंगार का आभूषण से जुड़ा हुआ, टूटे बाजूडारी लूम आपने सब सुना है, उस पर कोई ज्यादा भूमिका बांधने की जरूरत है नहीं क्योंकि लोकगीत की अपनी परंपरा है, लोकगीत की अपनी प्रस्तुति है, वो गीत अपने माध्यम से अपनी बात कह देता है। शहनाज

बहुत अद्भुत। और एक गीत है गोरबंद, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ सुनने की जरूरत है। और मैं भाई बंधु खा से कहूंगा कि बिना किसी समय सीमा की परवाह करते हुए इस गीत को आप अपने तरीके से हम तक पहुंचा दें।

कलाकारों ने पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं युवा कलाकारों ने भी अपनी गायकी से खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति की सराहना की।

नया कलाकार है मंथन मंथन डावरा और सीखने के दौर से है, लेकिन ऐसे में बड़े कलाकारों के बीच में ऐसी परफॉर्मेंस दे देना भी बड़ी बात होती है, बेहतरीन है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब जो कि जिस भक्ति भाव का एक भजन जो मंथन के जरिए हम तक पहुंचने वाला है, वो दरअसल समर्पण के भाव की बात है। समर्पण की बात होती है तो बहुत सारे कवियों ने, चिंतकों ने, संतों ने ये बात हमें कही है। कबीर ने एक बात कही है कि कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आए, सर सौंपे सोही पीवे नहीं पिए ना जाए। समर्पण तो वो है कि जब पूरा का पूरा सब कुछ, सर्वस्व सब कुछ कर दिया जाए। मंथन के माध्यम से सुनते ही लोक भजन।

मंथन डावरा, बुंदू खान लंगा और शहनाज खान के गाए इन लोक गीतों ने लोक संगीत संध्या की शाम को रंगीन बना दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित विधायक डुंगराम गैदर ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी लोक कला और संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं।

रविवार का दिन सूरतगढ़, बंधु खान जी सैनाथ जैसे कलाकारों की प्रस्तुति और आकाशवाणी सूरतगढ़ का कार्यक्रम, चौपाल की याद दिला दी राजेश जी आपने। चौपाल जद कार्यक्रम आंतो तो पहले ही इंतजार करता कि चौपाल कार्यक्रम आवेगो, राजस्थानी का गीत सुनागा, सही राम जी का भजन सुनागा, कालू राम प्रजापत जी का गीत सुनागा। और आज भी सगी सगी प्रस्तुति के माध्यम वास्तव में ऐतिहासिक कार्यक्रम, कलाकारों की जी की प्रस्तुति है वास्तव में ऐतिहासिक है। और थे राजेश जी की जब पसंद है ढूंढ के ले आओ जैसलमेर हूँ दिल्ली हूँ तो फिर भी मैं कमी कोई हो ही कौन सके, समय की नजाकत है, मारो जी को टाइम है वो मारो हुआ कौन ही राजेश जी करूँ के ऑफिसों में राइट 6:05 पर निकलने को मेरा प्रयास हो, मैं 6:15 पहुँचूँ लेकिन जो ही 12 गाड़ी में बैठने वाला हो इतना कोई अब करें क्या। लेकिन फिर भी आज वास्तव में बहुत अच्छो कार्यक्रम है, थे लोग पूरे की पूरी प्रस्तुति सुनूंगा और दोबारा याद ने ताज़ा करने के वास्ते थारो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बताइए।

0: इस कार्यक्रम में उपस्थित आकाशवाणी सूरतगढ़ के कार्यक्रम अधिकारी नवीन सिसोदिया ने कलाकारों और यहां उपस्थित सभी श्रोताओं का धन्यवाद दिया।
1: आदरणीय डीडी साहब, समस्त अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर यहाँ पर आए और कलाकारों का इतना सम्मान किया। कलाकार का सबसे बड़ा सम्मान होता है कि आप उसको इतनी देर बैठकर सुने। और हमारा जो लोक है, लोक कलाकार, ऐसे कलाकार आज मैं तो ये कहूँगा कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, इन्होंने जिंदा रखा है। और आकाशवाणी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है लोक कलाकारों को जीवित रखने का। और ये जो प्रयास

0: वो यही था कि आकाशवाणी ने बंद नहीं किया है, ये ट्रांजिशन है। आप देखिए हमारे बंधु भाई हैं और हमारे जो नए कलाकार हैं वो तैयार हो रहे, अगली पीढ़ी के कलाकार हैं। आप सभी ने समय दिया, यहाँ पधारे, इन्हें सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: लोक संगीत की मधुर स्वर लहरियों और उत्साह से भरपूर इस सांस्कृतिक संध्या का समापन पिता और पुत्री के प्रेम को दर्शाते लोकगीत प्रस्तुति के साथ हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी सूरतगढ़ द्वारा आयोजित नवती पूर्ति लोक संगीत संध्या के संपादित अंश। संयोजक थे नवीन सिसोदिया, लोक गायक बुंदू खान लंगा एंड अबीब खान पार्टी, शहनाज मंथन डावरा, तबला वादन मनप्रीत सिंह, मटका वादक कृष्ण जूलिया, वाचक स्वर थे गुलशन मेघानी और तकनीकी सहयोग देवेंद्र रोकना और नरेश कंबोज का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस गीत से।

अभी आपने काला पत्थर फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना। गीत के बोल साहिर के थे और संगीत राजेश रोशन का था।

अभी आपने ये लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना, फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे अनुरोध गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर।

जा ऋषिकेश की सैर, बच्चों के लिए ज़रूरी है आउटडोर गेम, रसोई गैस की बचत, गर्मी में ठंडक देती रायता रेसिपी।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर, युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम की सभा में 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे देश की ऊर्जा युवा प्रतिभा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, डिजिटल इंडिया, वृक्ष लगाएं धरती बचाएं और आज का इतिहास।

सराइकी का समय रहेगा 6:05 पर। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से 6:40 पर। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा 7 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे राजस्थान की विरासत, सोनारगढ़ का किला, खेती में पशुधन की उपयोगिता, हरी खाद ढेंचा व उसके फायदे, बाजार भाव और मौसम की जानकारी।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर। फिल्म संगीत एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:15 पर।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे रात्रि 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार लक्ष्मी की ओर से। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से।

रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, गांव खोखरावली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, शगुन बारासा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, गांव अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, मोक्ष, दिशा, सुशांत, विक्रम जयपाल, सादुल शहर से राम कुमार रिवार, चंद्रकला रिवार, गांव फरासी जीरा हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, सिद्धार्थनगर दयापुर भाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। इसी गीत की फरमाइश की थी हमें मोहली चंडीगढ़ सेक्टर 67 से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, बेहरवाला खुद सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़, व्यास कॉलोनी बीकानेर से राज, डॉक्टर अशोक कुमार साहिल, संतोष साहिल, राजश्री गोलव साहिल, नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरर, कृष्ण मुकेश तरर, रामचंद्र तरर, कपिल देव तरर, हिमानी जाखर, हीरावाली गांव फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिनवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है जन्म जन्म। इस गीत की फरमाइश की है हमें गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिघान खुराना, हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, वीरमग्राम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, परवीन सुल्ताना, ढाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खान, सीमा बानो, विनोद खां, गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, रंगमहल से सुखदेव नाथ, अमित कुमार, दो के एस आर से इंद्र मोहन। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दयावान। आवाज़ें पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की। इस गीत की फरमाइश की है हमें दिल्ली मोती नगर से मानसी गौरव अरोरा, वड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े विजय तायड़े अमोल तायड़े सानवी वाशीमकर, जीगांव नांदुरा से वसंतराव भोजने सुनंदा भोजने सोनू भोजने, चांदूर विश्वा नादुरा से तुषार करांगले रूपाली करांगले रितिका करांगले श्रावणी करांगले, बने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा, जलाला जालंधर पंजाब से ज्योति मकर मन्नत

भरत मकर कमल सहानी, रामपुरा मटोरिया से मुरारी लाल अमन रमन तनीर सीताराम मदन लाल शर्मा पंकज हर्ष मनीष राजेश कुमार शर्मा, भादरा अनूप शहर से गजानन सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारी लाल शर्मा ममता मीतू कीनू अक्षकु महावीर लोरा डिंपल ईशान आयुष अनामिका, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत नेहा जैन दीपक मयंक मूणत चेतन नाहटा, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका गजबिये तन्मय गजबिये, डोडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय दे तामुरिया तुषार दे तामुरिया डोली बेबी पूजा तामुरिया राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दीवाना, आवाज़ कुमार सानू की है, गीत के बोल समीर के और संगीत नदीम शवन का। इस गीत की फरमाइश की है हमें बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग, जैन मंदिर वाली कुरावाली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा, उच्च भट्टी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, बाड़ीवाला फाजिलका पंजाब से क्रियांश बागड़िया, योगेश बागड़िया, ओम बागड़िया, बेबी गरिमा बागड़िया, रजत और मनीष चौधरी, बठिंडा रोड मंडी डबवाली।

से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम कगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशन सिंह, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, चक 6 MSR अनूपगढ़ से रमेश कुमार, समीर, रामदेव, पारुल, अंशुमन, जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सारण, मोनिका और मनीष सारण, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशनला देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकन वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा,

सारण मोनिका और मनीष सारण, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल दिवांगन, कौशनला दिवांगन, हेमलता डिंपल दिवांगन, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकन वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजा रावत राज, मधु राजावत, राशि रक्षित, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से डॉक्टर गौरव कड़ियारा, मनु कड़ियारा, लड्डू कड़ियारा, आसाम से हितेंद्र दास, नेपा नगर से मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक जगजीत सिंह को।

0: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय है मूंगफली की उन्नत खेती।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की, और खेती पाती में देखा नहीं तो अब सावणी की जी की फसलों का माँ अपना जो किसान भाई लोग है बे नरमा कपास की जी की बिजान तब लगभग कहीं कर दी और कटी चालन भी ला रही है। और थोड़ा सा दिना बाद का माँ आपने की है का धान की जी की रुपाई है अब आपने इस क्षेत्र में शुरू हो जाएगी, क्योंकि पंजीरी जी की है पोत जी की है वह अपने किसान भाई लोग बिजांत करी दी। तो अब देखा नहीं तो आपने जो किसान भाई लोग है बे मूँगफली की भी बिजांत कर सके, क्योंकि तिलहनी फसलों का माँ आपने इस क्षेत्र का माँ मूंगफली जी की है बा संगोपांग क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि आपनों कुछ एक जो को रकबो है क्षेत्र जो को है वो नाड़ी बेड को है, और इनके अलावा कुछ एक जो को हनुमानगढ़ गंगानगर कुछ कुछ रकबो है वो आपने बिरानी है। तो बिरानी में क्या है कि मूंगफली जिसी फसल है वह बहुत बढ़िया और बेहतर तरीका से अपने जो किसान भाई लोग अभी बीजांत कर सके, बिंगो जो उत्पादन ले सके, बिजो मुनाफो कमा सके, और अट्ठा हुआ भी है और बिंगो फायदो भी अपने जो किसान भाई लोग अभी उठा है। लेकिन बीसु पिला जरूरी है कि आपने जमीन को जो सुधार है वो करना जरूरी है, भूमि उपचार जो को है वो करना जरूरी है, और इंगा सागे सागे आपने किया है का पानी जो को है बिंग जी जांच परख है वह भी आपने टेम सर करवा लेनी जरूरी है, और सागे सागे आपने अपने खेत का माँ मूंगफली की बीजांत करने से पहला भूमि का मां गली सड़ी गोबर की जी की खाद है कंपोस्ट जी की खाद है वह भी आप बुरका देवा ताकि भूमि की जी की उर्वरा शक्ति है वह थोड़ी सी बढ़िया बन जाए और अपनी जी की फसल है वह बढ़िया हो जाए। बात करें जी मूंगफली की उन्नत और अच्छी किस्मों के बारे में माँ, तो अपने इस क्षेत्र का माँ HNG 123 नाम से किस्म है जो कि बहुत बढ़िया किस्म मानी जाए, और अपने हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र के लिए बढ़िया किस्म है जो कि 124 दिनों में पक के तैयार हो जाए, और इनका पौधा जगह है वे अर्धविस्तारी यानी कि थोड़ा बहुत फैलाव वाला हो।

है और पौधा जो है मध्यम आकार का गहरा हरे रंग की पत्तियां वाला होवे और एक किस्म का जो विकास है वो बढ़िया और बेहतर होवे। फलियां जकी है डोडियां जकी है बे मध्यम आकार की हुए और दो दाना वाली हुए। दाना जो है बे लाल बैंगनी रंगा हुआ है और 100 दाना का जो भार है वो 54 ग्राम गए आशा पास हुए। तो यहाँ मांस का आज की HNG 123 किस्म है, बहुत बढ़िया किस्म है और इनमें तेल की जिकी मात्रा है बा 49 सैकड़ा तक हुए। तो इनमें लो तत्व की जिकी कमी से होने वाले जो को रोग है या फिर पीलोपन जो को एविंग प्रति सहनशील भी है तो बढ़िया किस्म है। अपना किसान भाई लोग किस्म की बीजांत कर सके। इनके अलावा HNG 69 नाम से एक किस्म है जो कि बहुत बढ़िया किस्म आप भी मान लीजिए और अपना हनुमान नगर क्षेत्र में इनकी बीजांत भी हुए और आपकी जो कि रेतीली और दोमट भूमि है भी वहाँ बिजाई करने के लिए बढ़िया और उपयुक्त किस्म है। और ये किस्म ने अपा मांस का अर्धविस्तारी किस्म है और ये किस्म का जगह पौधा है वे मध्यम आकार का और हल्के रंग की पत्तियां हैं वे हुए और फलियां में 2 से 3 दाना जगह है वे देखने मिले हल्की नोकदार और मध्यम कटाव वाली जिसकी फलियां बे हुए और फलियां को जो छिलाई जिसकी हवा 66 सैकड़ा तक आस पास हो जाए तो बढ़िया किस्म मांस का अपा। इनके अलावा मल्लिका जकी ना अपा ICHG 00440 नाम से भी जाना। तो आपने इनके क्षेत्र के लिए भी आप बढ़िया किस्म है और आपने किसान भाई लोगों ने इनकी भी बीजांत करनी चाहिए। आप भी रेतीली और दोमट भूमि के लिए बढ़िया किस्म मानी जाए और इंगमा तेल की मात्रा की बात करें तो 48 सैकड़ा के आसपास है और प्रोटीन की जिकी मात्रा है वह 20.2 के आसपास है अपने मानी जाए। तो आ एक किस्म जिकी है बढ़िया किस्म है इनमें पौष्टिक गुणा से भरपूर आपने मांस का किस्म ने तो आपने जो किसान भाई लोग है बे मल्लिका नाम की जो किस्म है भी जानत कर सको। इनके अलावा HNG 10 जकी है अब भी बहुत बढ़िया किस्म है। M13 नाम से एक किस्म है आप भी बहुत बढ़िया किस्म है। तो आपने जो किसान भाई लोग है बे हम कोई भी एक किस्म जकी है चुनाव करके और बढ़िया तरीके से भी छंटाई करके और बीज उपचारित करके आपने जो किसान भाई लोग अभी भी जानत कर सके। अभी मौको है और आपने आने वाले टाइम में 10-12 दिन तक आप बीजान जकी कर सका मौका सर टाइम है अपन रूणी जकी निकाल के भूमि सुधार करके बिंग समतलीकरण करके और अपा मूंगफली जी की बीजांत है वह कर सका। अब बात करें जी हाँ फसल चक्र के हिसाब से अगर आपकी बीजांत करनी है तो पिछला साल अगर आपने पड़त राखीड़ी भूमि तो बिंगमा अगर आप मूंगफली बीजांत करा तो ज़्यादा फायदा है। खाली भूमि में क्या है थोड़ा बहुत कचरों मचरो जो को है बीज का है बे अपने खरपतवार का खत्म हो गया उसी और भी बाद में अगर बिंगमा मूंगफली बीजांत करा तो अपने लिए फायदे की बात है। और इनके अलावा अगर पिछली बार आपने कणक की बीजांत करी और बिंगमा अगर आप मूंगफली बीजांत करा तो वह भी बहुत बढ़िया अपन फायदा देश के मुनाफा के तौर पर भी उत्पादन के तौर पर भी और फलत के तौर पर भी। अब खेत के चुनाव की बात करा तो मूंगफली की खेत खातर अपने रेतीली दोमट भूमि जिकी है वह अपने जगह विशेषज्ञ बढ़िया बतावे और बिंग स्तर के ऊपर लगभग 8 से 10 सैकड़ा तक हल्की सेंटीमीटर तक हल्की जिकी माटी है वह बिंग जिकी परत है वह होनी चाहिए। इसे खेत में मूंगफली की जिकी पैदावार है वह बढ़िया हुए और मूंगफली जिकी है वह भारी चिकनी और क्षारिय भूमि में अपन ने कतई नहीं बीजनी चाहिए। कई बार देखे करानी अपन जटा सोर वाली भूमि है कालियो सोरो है धोड़ियो सोरो है या फिर खारोपन है या फिर जटा अपने ट्यूबवेल को जो किसान भाई लोग पानी लगा जिकी भूमि में तो बटा खारोपन ज़्यादा है तो बटा अपन मूंगफली की जिसी फसल है बिंग बीजात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आ एक जड़ वाली किस्म है इनमें जड़ा गवा क्या क्या अगर थोड़ा बहुत कठोरपन आ जाए तो बीच क्या का अपने जो मूंगफली का जगह दाना है भी बढ़िया कौन ही बनी घेघरी जिकी है वह भी बढ़िया कौन बने नहीं और इनके अलावा बिंगमा जिकी गुणवत्ता है वह भी बढ़िया कौन ही बनी। तो इन वास्ते अपने इन बातों को पूरा ध्यान रखना है और इनके अलावा आप अपने इन क्षेत्र का माँ किया है कि अंतरशस्य कृषि जिकी है वह भी करे क्योंकि एक फसल का साग है बीच बीच में दूसरी फसलों की बीजांत करे। तो अपने जो किसान भाई लोग है भी अगर कपास की या फिर नरमा की फसल की बीजांत कर रखी है तो बंग साग अपने मूंगफली की जिकी फसल है बीजांत कर सके क्योंकि वो बढ़िया तरीको है और अंतरशस्य कृषि जिकी है वह अपन फायदा को सौदो है क्योंकि कई बार यह हो जाए कि एक फसल के अंदर अगर कोई रोग कीटाणु लाग जाए तो अगर आपने दूसरी फसल अपनी फसल के साथ बीजांत करी है तो बीच अपने फायदा हो जाए। तो इन इतियाँ आपने क्या है घाटो बाद जो है वो पूरा होते रहे। अब बीज की मात्रा की बात करा तो आपने बुआई से पहला सबसे जरूरी बात तो आ है कि अपने बीज की जगह छंटाई है करनी जरूरी है बिंगमा को टूटा फूटा बीज है काना है गलेड़ा जगह बीज है भी अपन अलग करना है और बढ़िया तरीके से छिलाई करके और बुआई से पहला अपन ने एक दिन पहला बीज जगह है वे उपचारित कर देवा और बीव बाद का माँ के है कि अपन ने बीजांत है वह करनी चाहिए। अब मूंगफली की बीजांत को जो समय है नहीं वो बिया देखा तो 1 अप्रैल से 15 जून तक आपने जगह विशेषज्ञ भी बताने ला रहे हैं तो 15 जून तो अजय 10-15 दिन आप यहाँ मांस कहाँ का पड़े है तो आपने जो किसान भाई लोग बीजांत कर सके लेकिन जटे गहरी रेतीली भूमि है
भट्ठा अपन 15 मई तक जी की बिजांत है बापन कर देनी चाहिए, है ना। 15 मई अभी

0: 10-15 दिन बाकी है, और भी बाद गांव फिर के का धीरे धीरे थोड़ो बहुत जो उत्पादन है भी पर भी फर्क पड़ सके, घटो बाद हो सके। और बुआई जो की अब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन करनी है कतारा गवा, और 5 साढ़े 7 सेंटीमीटर की गहराई गवा अपन है बीजांच जो की अब करनी है। बीज उपचार जो है वो करना जरूरी है, क्योंकि बीज बिना उपचार करे अगर आप कोई चीज़ भी बीजांत करांगा तो बीज क्या का अपना भूमि जनित जगह रोग है, बीज जनित जगह रोग है, बेज्यादा लागने की संभावना रहे। और इनके अलावा सबसे जरूरी बात तो आ है कि भूमि को समतलीकरण करना जरूरी है, और जटा पानी की व्यवस्था बढ़िया है बट्ठे ही आपने मूँगफली बीजांत करनी है। और मूँगफली जो की है आप मीठा पानी अगर है तो ही आप बीजांत करा, खारा पानी की जगह भूमि है या फिर आपने खारा पानी की व्यवस्था है तो भट्ठा आप बीजांत नहीं करनी चाहिए। बीच में अपने घाटो भी हो सके, अपना जो पीसो टक्को लगे है वो भी एड़ो जा सके। और अब देखा नहीं तो आपने जो किसान भाई लोग है भी भूमि सुधार के तौर पर माटी जाँच जरूर करवा ले। माटी जाँच का मैं क्या है कि जी जी आप पानी लगावा नहीं ट्यूबवेल वो पानी रड़पड़म करके लगावा के बाद नहर का पानी के साग तो पानी जिसको पीएच मान है या फिर माटी को जिसको पीएच मान है भी वहाँ बदलाव होने तो रहे। और कई बार आप बिना जांच पर करें, बिना माटी की जांच करवाए, बिना पानी की जांच करवाए अगर आप कोई फसल की भी जांच करा तो भी शुक्की है कि अपनी उत्पादन जो है वो कम हुए। और इनके अलावा कि कई बार हो जाए कि फलत हो जाए, पैदावार भी हो जाए लेकिन बिंग जी गुणवत्ता है बी पर उल्टो असर पड़े। तो माटी की जिसकी जाँच आप करवा ले तो बिंग हिसाब से आप अपना जगह नज़दीकी कृषि विशेषज्ञ है, कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर कोई जाने जान किसान है भी से आप राय मशीरों कर लेवा कभी आप मेरी माटी को जो पीएच मानी शोक है बिंगो खारोपन बिंगो मीठोपन इतोक है तो बिंग में किसी किस्म बढ़िया रहेगी। आ अगर किस्म बढ़िया है तो आप बीजांत कर सका। तो इन तरीके से अगर अपन जानकारी रखा नहीं तो छोटी छोटी जी की बातें हैं वे भले ही छोटी है लेकिन जानकारी की बातें हैं। आ जानकारियां ने अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करके अगर खेती करांगा तो अपन ज़्यादा फायदों होसी। इनके अलावा देखा नहीं तो अब आपने इन क्षेत्र गमा की है कि आपने किसान भाई लोग है बे ऊंची नीची जठे जगह बट्ठे भी बीजांत करे तो बाकी अब वर्षा पर आधारित खेती हुए कई बार वर्षा हो जाए तो हो जाए नहीं तो अपना फुहारा विधि जिकी है वह अपना आगे भी आप कर सका। बिंग में समतलीकरण की जिकी जरूरत है वह पड़े को नहीं, फुहारा विधि है, बूंद बूंद सिंचाई जिकी विधि है, वह अपने पानी बचाने को भी एक बहुत बढ़िया तरीको है। और अपनी जिकी फसल है बिना भी ज़्यादा फायदा है। इनके अलावा खरपतवार जो है वो भी बहुत कम हुआ है। तो आम बातों को पूरा ध्यान रखना, ऐसा बढ़िया तरीका से खेती करनी है अपना बहु खेत का नहीं चलूँ। राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत पहुंचा। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ

0: सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। चार दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाईमाधोपुर के बाडूलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और दो निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है। संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कहते हैं शब्द तो केवल जरिया है, असली बात तो जज्बातों की होती है। और आज का ये प्रोग्राम आपके साथ शब्दों का नहीं, जज्बातों का है, भावनाओं का है। आज का ये कार्यक्रम एक जरिया है आपके साथ

हमारा रिश्ता मजबूत करने का, आपके दिलों में एक जगह बनाने का, आपके साथ दिल से दिल जोड़ने का। आप सभी को आपके ही अपने कार्यक्रम महिला जगत में तहे दिल से नमस्कार, अभिवंदन। सखियों, हम सभी जानते हैं अभी छुट्टियों का समय चल रहा है और ये समय खास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बच्चों की यही डिमांड रहती है कि मम्मा, हम घूमने कहाँ जा रहे हैं, हम कब जाएंगे, किस जगह जाएंगे, वहाँ क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का वेदर कैसा होगा, हम किसको लेके जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में रहते हैं। तो सखियों, इस जो ये चीज़ होती है कि हम घूमने कहाँ जाएंगे, और इसके लिए हम भी बहुत बरकरार रहते हैं, बेकरार रहते हैं, क्योंकि बच्चों के जरिए ही हम भी घूम सकते हैं और अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। सखियों, कहा जाता है कि जो हमारा जीवन है, हम महिलाओं का जो जीवन है, वो भागदौड़ भरा होता है। कहने को तो पुरुष के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी रहती है, घर परिवार की, समाज की, और भी कई अनेक जिम्मेदारियाँ, लेकिन महिला के बिना उसका भी जीवन अधूरा सा लगता है। तो इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, जिसमें सुबह सबसे पहले जो चाय की शुरुआत होती है, यानी सुबह की चाय से लेके रात के दूध तक का जो सफ़र होता है, वो हमारा जीवन सिर्फ भागता ही रहता है, कभी इस कमरे में तो कभी उस आंगन में, और इन सब के बीच में हम थोड़ा सा सुकून और शांति चाहते हैं। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि थोड़ा घूमना हो जाए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए, और इसके लिए सबसे बेहतर जो जगह है वो देवभूमि ऋषिकेश से बेहतर कोई जगह नहीं है। और ऋषियों, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ऋषिकेश में छुट्टियों का मजा लेना एक शानदार अनुभव है। देवभूमि के नाम से मशहूर यह जगह गंगा नदी, ऊंचे पहाड़ों और रोमांचक गतिविधियों का बेहतरीन संगम है। यहाँ घूमने और मौज मस्ती करने के लिए बहुत सी बेहतरीन जगह है, जिन जगह पे बड़ा सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति होती है, यहाँ आत्मिक सुख महसूस होता है। सखियों, ऋषिकेश हरिद्वार के पास, जहाँ गंगा नदी रह होती है, और गंगा नदी के किनारे जो ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती है, गंगा आरती, और भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें आनंद और सुकून की प्राप्ति होती है। सखियों, घूमना तो हर जगह घूम सकते हैं और हर जगह इससे भी बेहतरीन एडवेंचर मिल सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्पॉट्स मिल सकते हैं, और भी बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन जो स्थान हमारे भगवान, मतलब जो स्थान इतना पवित्र होता है और जहाँ की हवाएं इतनी पवित्र है, उस स्थान का मज़ा ही अपने आप में ही बहुत अलग सा है। तो सखियों, इस रोमांचक सफ़र में बातें आपके साथ यूं ही जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और सुनाते हैं आपको एक अच्छा सा गीत।

सखियों, गंगा नदी में राफ्टिंग का रोमांच जरूर लेना चाहिए। अगर बात कर रहे हैं हम ऋषिकेश की, तो गंगा नदी के राफ्टिंग का रोमांच हमें जरूर लेना चाहिए। रात को नदी किनारे टेंट में रुकने और तारों के नीचे रात बिताने का अपना अलग ही मज़ा है। सखियों, जो टिमटिमाते हुए तारे उस टेंट में से जब हम देखते हैं तो बहुत आनंदित लगता है, और ये जो जो चीज़ है वो कहीं और नहीं मिलती। शाम को होने वाली गंगा आरती यहाँ का सबसे मुख्य और शांति देने वाला आकर्षण है। सखियों, गंगा नदी पर बने ये लोहे के मशहूर सस्पेंशन पुल है, यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। शांति और सुकून के लिए मशहूर इस जगह पर दीवारें कलाकृतियों से सजी है। सखियों, यहाँ की हवा में ही शांति है, और यहाँ की जो दीवारों पे कलाकृतियाँ हैं वो हमें बहुत सुकून देती है। हमको अगर एडवेंचर पसंद है तो बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, क्लिफ जंपिंग जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आजकल के यूथ को ये सब बहुत पसंद होता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर हमको गंगा आरती में शामिल होना है तो हमें शाम को 5 बजे तक घाट पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम से अगर हम घाट पे पहुंच जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। साथ ही जो आगे जो भीड़ बढ़ती है उस भीड़ में हम थोड़े से अपनी जगह बना पाते हैं, तो इसलिए हमको टाइम से ही गंगा घाट पे पहुंच जाना चाहिए। राफ्टिंग या दूसरे किसी एडवेंचर के लिए हमेशा प्रमाणित एजेंसी से ही बुकिंग करनी चाहिए। और दोपहर के बाद का जो ऋषिकेश का समय है वो हमें ताजगी और हल्की रोमांच का मज़ा लेने के लिए बिल्कुल सही होता है। यानी कि अगर हम ऋषिकेश घूमना जाते हैं तो हमें दोपहर के बाद का समय लेना चाहिए। यानी हम वहाँ पहुँच गए हैं तो हमको सुबह सुबह घूमने नहीं निकलना चाहिए, दोपहर के बाद में ही हमको, यानी सुबह का जो लंच है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, उसके बाद में लंच, वो करके हमें घूमने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद ऋषिकेश में एक ताजगी और रोमांच से भरा नज़ारा देखने को मिलता है। और ऋषिकेश एक रमणीय स्थल है, यहाँ घूमने का मज़ा अपने आप में ही बहुत अलग सा लगता है। हरिद्वार के पास ये पावन भूमि अपने आप में सुकून देने वाली है। साथ ही साथ इसमें लक्ष्मण झूला और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत अच्छी लगेगी और हमें बहुत आनंदित लगेगी। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके हम दर्शन भी कर सकते हैं। गंगा नदी है, उसकी आरती हमें ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। एडवेंचर्स है, वो भी हमें ट्राई करनी चाहिए। तो सखियों, अगर आप भी अपना मन बना रहे हैं ऋषिकेश के लिए तो ज़रूर जाइए, और बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। तो अभी चल रहा है छुट्टियों का समय, तो आपको ऋषिकेश एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ सुनते हैं एक बार फिर से गाना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे आपकी सही

0: जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स बेहद जरूरी हैं। बाहर खेलने से बच्चों की मांसपेशियां और हड्डियों का विकास होता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा इससे गैजेट्स की जो लत है वो छूट जाती है।

पेशियां और हड्डियों का विकास होता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा इससे गैजेट्स की जो लत है वो छूट जाती है। सखियों, आजकल ये एक आम समस्या, ये आम बात बन चुकी है कि बच्चों को फोन बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है और हम माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हम अपना काम कर लेते हैं और इनको फोन दे देते हैं, लेकिन ये बहुत ही चीज खराब हो रही है क्योंकि इससे जो बच्चों का मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव ही नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ उनके अंदर जो ब्रेन की पावर है, मेमोरी पावर है, याददाश्त तक कमज़ोर हो रही है और वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं आफ्टर फ़ोन के बाद में, उनको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। तो सखियों, इन सब की वजह से जो ये चीज़ जो गलत फैल रही है वो बहुत ख़राब कर रही है उनके मस्तिष्क को। जब आज का बच्चा यानी हमारी नींव ही कमज़ोर रह जाएगी तो हमारे देश के विकास में भी कमी आने लगेगी। तो सखियों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चों के साथ समय बिताना है, उनके अनुसार हमको उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खेलना है, गेम्स खेलने हैं, जो भी हम खेलना चाहे वो करने हैं। तो सखियों, ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं इससे बच्चों में ये सारी जो लतें हैं वो छूट जाती हैं, सामाजिक कौशल का विकास होता है। सखियों, खुली हवा और धूप में खेलने से बच्चों को विटामिन डी मिलता है, बच्चे प्रकृति के पास रहते हैं, उसकी महत्वता को समझते हैं, तो इससे उनको बहुत लाभ ही लाभ मिलते हैं। क्योंकि पहले के जो बच्चे होते थे यानी हम लोग हैं या हमसे पहले वाली एक जनरेशन, वो काफ़ी समय प्रकृति के बीच में ही बिता देती थी, खुले आंगन में खेल खेले जाते थे, और आज पूरा घर बंद होता है, न सूरज की रोशनी आती है, न बारिश की बूंदें आती है। ऐसे में बच्चों को प्रकृति से बहुत दूर रखा जा रहा है। तो अगर हम उनको सुबह की हवा, खुली धूप, ये सब करवाएं तो इससे उनको विटामिन डी, और वो प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे, वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे, और जब जड़ों से जुड़े हुए रहते हैं वो एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनता है। साथ ही साथ जो विटामिन डी धूप से मिलता है इससे उनकी हड्डियां मजबूत होती है और खेल कूद से कैलोरी बर्न होती है और मोटापा कम होने में भी मदद मिलती है। बाहर खेलने से मस्तिष्क का अतिरिक्त विकास होता है और उनकी प्रक्रिया तेज होती है। सखियों, प्रकृति के बीच समय बिताने से बच्चों का मूड अच्छा रहता है और वो तरोताजा महसूस करते हैं। अन्य बच्चों के साथ खेलने में टीम वर्क, शेयरिंग और लीडरशिप के गुण सीखते हैं। खेलों में जीतने और हारने से बच्चों की भावनात्मक समझ बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। ये छोटे छोटे गेम में कभी जीतना और कभी हारने से उनकी समझ बढ़ती है कि जीवन में भी आगे जो आने वाले उतार चढ़ाव है उसमें भी कभी जीत और हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए उनमें एक मजबूती आती है। साथ ही साथ खेल कूद से वो फिट रहते हैं और उनकी जो कैलोरीज है वो बर्न होती है और उनमें मोटापा नहीं आता, क्योंकि फ़ोन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी देखने से वो बैठे रहते हैं, इससे उनके मोटापा आने लगता है। साथ ही साथ उनको भूख नहीं लगती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो इसलिए खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम में जब बच्चे बाहर गलियों में बिना किसी डर के कि हम गंदे हो रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, न माता पिता को कोई डर होता था, न बच्चों को। लेकिन आज अगर एक रेत का कण भी उनके शरीर पे आ जाता है तो माता पिता इस तरीके से उसको साफ करते हैं, उनके कपड़े चेंज कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मिट्टी से ही इंसान का जन्म होता है और मिट्टी में ही पलकर वो बड़ा होता है और मिट्टी भी उसको मजबूत बनाती है। तो सखियों, हमें हमारे बच्चों को आउटडोर गेम्स जरूर खिलवाने चाहिए, और अभी छुट्टियों का समय चल रहा है तो इसमें इंडोर गेम के साथ साथ, हम जानते हैं कि अभी गर्मियों हैं और गर्मी में धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह ठंडी ठंडी सुबह में जो हवाएं चल रही है, शाम को धूप जाने के बाद में 5-6 बजे के बाद में उनको गार्डन में ले जाके आउटडोर गेम्स खिलवा सकते हैं। ऐसे समय हमको उन्हें बाहर लेके जाना चाहिए, पार्क में बच्चों के साथ उनका इंटरोगेशन करवाना चाहिए, उनको गेम्स खिलवाने चाहिए, इनसे उनमें एक भावनात्मक समझ आती है, रिश्तों को जोड़ने की कला आती है, तो ये सब हमें ज़रूर करने चाहिए। तो सखियों, बातों का सिलसिला तो आपके साथ लगा ही रहेगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, आजकल बच्चों के लगातार स्क्रीन में चिपके रहने के कारण आज के बच्चों में शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, जिन्हें दूर करने में बाहरी खेल सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। सखियों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि आजकल बच्चे फ़ोन में, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इन सब में चिपके रहते हैं, न उनको खाने का होश रहता है न पहनने का होश, और इन सब के बीच में वो अपनी हेल्थ को बहुत अधिक इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि फ़ोन में चिपके रहने से उनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट, माइंड पे, ब्रेन पावर पे, मेटाबॉलिज्म पे और भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सखियों, दौड़ना, कूदना और साइकिल चलाने से बच्चों की मांसपेशियाँ जो है वो मजबूत होती हैं और शरीर लचीला बनता है। धूप में खेलने से बच्चों के शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। सखियों, खुली हवा में खेलने से गुड फील आता है और गुड फील हार्मोन रिलीज होता है, जो बच्चों के मूड को सुधारते हैं। प्रकृति के बीच खेलने से बच्चों को सोचने की क्षमता और गहरी नींद आती है। क्रिकेट और फुटबॉल, खो खो जैसे खेल आपस में मिलकर काम करना और एक दूसरे का सहयोग करना सिखाते हैं। खेल खेल में बच्चे जो हैं वो निर्णय लेना, टीम को संभालना और नियमों का पालन करना भी सीखते हैं। तो सखियों, हमें आउटडोर गेम्स अपने बच्चों को जरूर खिलाने चाहिए। तो आज से ही शुरू करते हैं हम बच्चों को आउटडोर गेम्स खिलवाना और स्क्रीन से दूर रखना। जितना हो सके हमें बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, और अगर हम स्क्रीन टाइम देते हैं तो भी हमें 20-20 मिनट्स का ब्रेक देना चाहिए, यानी 20 मिनट्स के बाद में हमें कुछ ब्रेक, अगेन स्क्रीन टाइम, ऐसा करना चाहिए। तो सखियों, एक बार फिर से आपका छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा नगमा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, LPG की बचत के लिए खाना पकाने की जो आदत है उसमें बदलाव होता है। हमेशा धीमी या मध्यम आंच का प्रयोग करें, प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, पकाने से पहले दाल चावल को भिगो कर रखें। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन भी बहुत कम खर्च होता है। सखियों, खुले में खाना बनाने से गर्मी बाहर निकलती है, इसलिए हमेशा बर्तनों को ढककर पकाएं। साथ ही साथ हम खाना हमेशा धीमी आंच पर पकाना चाहिए, इससे उसके जो पोषक तत्व है वो बरकरार रहते हैं। खाना बनाते समय जरूरत के अनुसार ही हमें पानी डालना चाहिए। ज़्यादा पानी उबालने से गैस में अतिरिक्त खपत होती है और खाना बहुत देर तक के बाद बनता है। सखियों, फ्रिज से निकली हुई चीज़ों को पहले रूम टेम्परेचर पर आने दें, फिर पकाएं, और इससे खाना गर्म होने में ज़्यादा ईंधन नहीं लगता। ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करें जिनका हिस्सा चौड़ा हो ताकि वे चूल्हे की लौ से ज़्यादा कवर हो सके। तो सखियों, छोटी छोटी बातों से हम LPG गैस की बचत कर सकते हैं। तो हमें ये सब बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए और अपनाना चाहिए अपने जीवन में, अपने किचन की आदतों में। तो सखियों, चलते हैं एक बार फिर से गानों की ओर।

सखियों, गर्मी, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इसमें कुछ ठंडा खाने को मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। गर्मियों के मौसम में शरीर के अंदर से ठंडा रखने और पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए दही के रायते बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इससे डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। लौकी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो पेट की गर्मी को तुरंत शांत करती है। 1 कप कद्दूकस की हुई लौकी, 2 कप फेंटी हुई दही, भुना हुआ जीरा, काला नमक, बारीक कटा हुआ धनिया। सखियों, लौकी को थोड़ा उबालें और उसके बाद में उसको पानी छानकर ठंडा होने दें। अब दही में उबली हुई लौकी, काला नमक, जीरा पाउडर और हरा धनिया मिलाकर मिक्स करें। इसे फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, हेल्दी होगा और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है। तो सखियों, ये हमें अपने घर में ज़रूर ट्राई करना चाहिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ सुनते हैं एक और गीत।

वक्त ठहरता नहीं है, बस यादें बनकर रह जाता है। आज इसी वक्त में आपके साथ कुछ खट्टी मीठी बातें की, और अब यही वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। तो स्वीकार कीजिए हर्षिता का प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: bilateral defense cooperation, strengthening military-to-military ties, and exploring opportunities for defense-industrial collaboration, reflecting the growing strategic partnership between India and the Netherlands. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. On to sports. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto are taking on Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semi-finals of the Singapore Open Super 750 tournament today. The Indian pair secured their semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thangri and Toh Ey in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से अब समाचार विस्तार से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है ये अभियान अभी जारी है इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से

0: उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
3: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व

0: करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत।

0: संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त दिन की 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम है लोफर। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने हमजोली फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने वारिस फिल्म में लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को सुना। गीत के बोल वर्मा मलिक ने लिखे थे और संगीत उत्तम जगदीश का था।

लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में प्यासा सावन फिल्म का ये गीत। गीत के बोल संतोष आनंद के हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना। फिल्म का नाम था एक नज़र। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप लता मंगेशकर और हरिहरन को सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डर। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था शिव हरी ने। इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम को समाप्त करने की लक्ष्मी को दे इजाज़त। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजने वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

सुनेंगे मेरी पसंद। 3:30 पर आप सुनेंगे सूबाई लोकगीतों के प्रोग्रामों में भोजपुरी लोकगीत। 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। 4:50 पर आप सुनेंगे खबरें। और 5 बजे हमारी दूसरी मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि अगर ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें नाकाम रहीं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। वाशिंगटन में जारी बातचीत के बावजूद इसराइल और लबनान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है और आज ब्रिस्टल में खवातीन क्रिकेट में दूसरे 2020 बैन अवी मैच में भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ खेलेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मजमूरी तौर पर 3 मैच खेले जाने हैं। अब खबरें तफसील से। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय मुसल्ह अफवाज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़ग मसला नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वें कोर के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अजम के साथ इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अजम और मुसल्ह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मेयार, क्यादत और मुल्क की खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुक्ता नज़र अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मौसर क़्यादत की तामीर होती है। वजारत दिफा में सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर में कलीदी नौयत के मुताले से मुतालिक बैन अवी इंस्टीट्यूट IISS के शेंगरीला के मुजाकरात के मौके पर नैदरलैंड के वजीर दिफा डिलान येसेलगोज जेगेरियस के साथ तबादला ख्याल किया। वजारत दिफा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि गुफ्तगू के दौरान दो तरफा दिफाई तआवुन बढ़ाने, दोनों मुल्कों के फौजी राबतों को मुस्तहकम करने और सनअती दिफाई इश्तराक के मौके तलाश करने जैसे मौजूदात पर तवज्जो मरकूज की गई। इस बातचीत से जाहिर हो जाता है कि भारत और नीदरलैंड के दरमियान कलीदी नौयत की साझेदारी फरोग पा रही है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन आज बोधगया में महाबोधि मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मुराकबा किया जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बौद्ध ने निर्वाण हासिल किया था।

अपने दौरे के दौरान म्यांमार के सदर तारीखी बकरौर के सुजाता मंदिर गए और बोध गया की बर्मी मोनेस्ट्री का भी दौरा किया। उनके हमराह एक आला सतह का वफ्द भी है जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। इससे पहले म्यांमार के सदर का गया हवाई अड्डे पर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और रियासत के वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा ने उनका खैर मकदम किया। उनके इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और ज़्यादा मुस्तहकम होगा और भारत और म्यांमार के दरमियान सदियों पुराने सकाफती, तारीखी और बौद्ध रिश्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने ख़ानदानी सेहत का छठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगज़िए और माली तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात ख़ास तौर पर पता चलती है कि इदारों में की गई जचगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। आदाद शुमार से पता चला है कि 95.9% आमल खवातीन को जचगी के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली छमाही में मिलने वाली जचगी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन का आमला होने की मजमू शरह TFR 2% पर बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJ और हिफ़्ज़ान सेहत के तोसी शुदा इकदाम से हिफ़्ज़ान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी में इस्तेहकाम पैदा हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेगसेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा ना होने की सूरत में अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर देगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शेंगरीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेगसेट ने कहा कि अमेरिका की खित्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजीशन में है। अमेरिका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाज़े के बावजूद अमेरिका एशिया बहरुल काहिल खित्ते के लिए पाबंदे अहद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत बहरुल काहिल से अपनी खास तवज्जो नहीं हटाई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने आला मुशीरों के साथ 2 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें ईरान के साथ इम्कानी समझौते पर तबादला ख्याल किया गया। इस समझौते का मकसद जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाना है। ये मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई थी और आइंदा के लाए अमल के बारे में सूरत हाल वाज़ह नहीं है। मीटिंग से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने के किसी भी समझौते के तहत ईरान को आबनाए हुरमुज फिर से खोलनी होगी, इस बात का अहद करना होगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका को उसके अफजूदा यूरेनियम का जख़ीरा हटाने की इजाज़त होगी। अलबत्ता ईरान अपनी इस बात पर कायम है कि उसका एटमी प्रोग्राम महज गैर फौजी मकासद के लिए है। जनूबी कैलिफोर्निया की साबिक मेयर इलेन वांग ने खुद को इस बात का कसूरवार गर्दाना है कि वो चीन की हुकूमत के गैर कानूनी एजेंट के तौर पर काम करती रही हैं। वांग ने इस महीने शुरू में मेयर के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उन्होंने ये बात भी तस्लीम की है कि वो चीन के हुकाम की जानिब से बीजिंग की हिमायत में मजामीन तहरीर करती रही हैं, जिसकी जानकारी अमरीकी सरकार को भी नहीं दी गई, जबकि कानून के मुताबिक ऐसा करना ज़रूरी था। उन्होंने लॉस एंजलिस की वफाकी अदालत में अपना जुर्म तस्लीम किया और उन्हें 25,000 अमरीकी डॉलर के एवज 6 अक्टूबर तक जमानत दे दी गई, जबकि उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इसराइली फौजी कल मरजयून के करीब जनूबी लबनान के डिबिन गांव में दाखिल हो गए। ये लोग लबनान के काफी अंदर तक चले गए, अगरचे अमरीका में दोनों मुल्कों के फौजी एहलकारों की बराह रास्त बातचीत हुई। यह कदम इसराइल के ताज़ा हमलों के दौरान उठाया गया है, जिनमें कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। लबनान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि डेर कानून अल नहर और अब्बासिया पर किए गए हमलों में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक बलदियाती पुलिस एहलकार एबा गांव पर किए गए एक अलग हमले में हलाक हुआ। इसी दौरान 6 अरकान पर मुश्तमिल लबनान का एक फौजी वफद की दहाइयों में

0: मुल्कों के दरमियान पहली बराह रास्त फौजी बातचीत में पेंटागन में इसराइली फौजी अफसरान से मिला। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जंग अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है, जैसा कि मैदान जंग में सूरत हाल इसकी शाहिद है। सदर पुतिन के हवाले से रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि मैदान जंग में सूरत हाल इस अंदाज में सामने आ रही है कि इससे उन्हें यह कहने का हक हासिल हो गया है कि सूरत हाल अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए कोई मुकर्रा वक्त नहीं है। ख्वातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैन अल्क्वामी क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। भारत आज का मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज जीतने की कोशिश करेगा। यह मैच भारतीय वक्त मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोध गया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू किया है। अमेरिका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि अगर ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें नाकाम रहीं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। वॉशिंगटन में जारी बातचीत के बावजूद इसराइल और लबनान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। और आज ब्रिस्टल में खवातीन क्रिकेट में दूसरे 2020 बैन अल्क्वामी मैच में भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहब्बते फिल्म से है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

इस नगमे के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे उर्वशी सक्सेना के गाए हुए भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे। आशा भोसले की आवाज़ में द बर्निंग ट्रेन फिल्म का नगमा।

0: आइए अब सुनते हैं काला समंदर फिल्म का नगमा, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।
1: कर क्या करोगे तो

0: लेकर क्या करोगे क्या करोगे।
1: सुनते हैं अनजाना फिल्म का नगमा, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

आइए अब सुनते हैं राजकुमार फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाजों में।

लीजिए अब सुनिए सुशीला फिल्म का नगमा, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, अब खबरें नश्र होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय फ़ौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ओ मिन आउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। अमेरिका के वजीर दिफा पेट हैगसेथ ने कहा है कि अगर ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश नाकाम रही तो अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। वाशिंगटन में जारी बातचीत के बावजूद इसराइल और लेबनान के दरमियान लड़ाई में तेज़ी आ गई है। और आज ब्रिस्टल में खवातीन क्रिकेट में दूसरे 2020 बैन अक्वामी मैच में भारत मेज़बान इंग्लैंड के साथ खेलेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मजमूई तौर पर 3 मैच खेले जाने हैं। अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय मुसल्ह फौज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस अकेडमी में 150वें कोर्स के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अज़्म के साथ इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मियार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अज़्म और मसल्ह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मियार, क़यादत और मुल्क के खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुक्ते नज़र अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मुअस्सर क़यादत की तामीर होती है। वजारत दिफा में सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर में कलीदी नौइयत के मताले से मुतालिक बैन अल-अक़वामी इंस्टीट्यूट IISS के शंगरी ला के मुज़ाकरात के मौके पर नीदरलैंड के वजीर दिफा डिलन यसिगोस जेग्जरीस के साथ तबादले ख्याल किया। वजारत दिफा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि गुफ्तगू के दौरान दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने, दोनों मुल्कों के फौजी राबतों को मुस्तहकम करने और सनती दिफाई इश्तराक के मौाक़े तलाश करने जैसे मौजूद पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस बातचीत से जाहिर हो जाता है कि भारत और नीदरलैंड के दरमियान कलीदी नौइयत की साझेदारी फरोग पा रही है। जनाब राजेश कुमार सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के अपने हम ओहदा वजीर के साथ भी भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी समझौते के तहत होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने ख़ानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें इदादो शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगज़ी और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर ख़ास तरक्की का पता चलता है। ये जायज़ा कल जारी किया गया, जिससे ये बात ख़ासतौर पर पता चली है कि इदारों में किए गए जचगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। इदाद व शुमार से पता चलता है कि 95.9% हमला ख़वातीन को जचगी के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सिमाही में मिलने वाली जचगी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ही 70% थी, अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में ख़वातीन के हमला होने की मजमूई शरह TFR 2% पर बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से ख़ानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में ख़वातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तहफीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ्त भी जाहिर की गई है। ये भी कहा गया है कि जिन ख़वातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया

है उनकी तादाद तकरीबन दोगुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJY और हिफ्जान सेहत के तोसीशुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी में इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन आज बोध गया में महाबोधि मंदिर गए और महापूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मुराकबा किया, जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। अपने दौरे के दौरान म्यांमार के सदर तारीखी बाकरारूर के सुजाता मंदिर गए और बोध गया की बर्मी मॉन्स्टर का भी दौरा किया। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी है जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर वूमिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। इससे पहले म्यांमार के सदर का गया हवाई अड्डे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन और रियासत के वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा ने उनका खैर मकदम किया। उनके इस दौरे से उम्मीद की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन और ज़्यादा मुस्तहकम होगा और भारत और म्यांमार के दरमियान सदियों पुराने सकाफती, तारीखी और बौद्ध रिश्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के वजीर दिफा पेट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शांग्रीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका के खत्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजीशन में है। अमेरिका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाज़े के बावजूद अमेरिका एशिया बहरुलकाहल खत्ते के लिए पाबंदी अहद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत बहरुलकाहल से अपनी खास तवज्जो नहीं हटाई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने आला मशीरों के साथ 2 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें ईरान के साथ इम्कानी समझौते पर तबादले ख्याल किया गया। इस समझौते का मकसद जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाना है। ये मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई थी और आइंदा के लाए अमल के बारे में सूरत हाल वाज नहीं है। मीटिंग से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने के किसी भी समझौते के तहत ईरान को आबनाए हुरमुज फिर से खोलनी होगी। इस बात का अहद करना होगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका को उसके अफजुदा यूरेनियम का जख़ीरा हटाने की इजाज़त होगी। अलबत्ता ईरान अपनी इस बात पर कायम है कि उसका एटमी प्रोग्राम महज गैर फौजी मकासद के लिए है। इसराइली फौजी कल मरजयून के करीब जनूबी लेबनान के डिबाइन गांव में दाखिल हो गए। ये लोग लेबनान के काफ़ी अंदर तक चले गए, अगरचे अमेरिका में दोनों मुल्कों के फौजी अहलकारों की बराह रास्त बातचीत हुई। ये कदम इसराइल के ताज़ा हमलों के दौरान उठाया गया है, जिनमें कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए। लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि डीर कानून, अल नहार और अब्बासिया पर किए गए हमलों में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक बलदियाती पुलिस अहलकार इबा गांव पर किए गए एक अलग हमले में हलाक हुआ। इसी दौरान 6 अरकान पर मुश्तमिल लेबनान का एक फौजी वफद की दहाइयों में दोनों मुल्कों के दरमियान पहली बराह रास्त फौजी बातचीत में पेंटागन में इसराइली फौजी अफसरान से मिला। जनूबी कैलिफोर्निया के सबक मेयर इलीन वैंग ने खुद को इस बात का कसूरवार गर्दाना है कि वो चीन की हुकूमत के गैर कानूनी एजेंट के तौर पर काम करती रही हैं। वैंग ने इस महीने शुरू में मेयर के अहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उन्होंने ये बात भी तस्लीम की है कि वो चीन के हुकाम की जानिब से बीजिंग की हिमायत में मजामीन तहरीर करती रही हैं, जिसकी जानकारी अमरीकी सरकार को भी नहीं दी गई थी। ख्वातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे T20 बैन अक्वामी क्रिकेट मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोध गया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का

0: सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजने को है। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

सभी युवा साथियों का प्रिय कार्यक्रम युववाणी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित है आपका अपना साथी करण वर्मा। स्वागत है आपका हमारे आज के इस अंक में, जिसका आगाज हम करेंगे डिजिटल इंडिया से आज की बात के साथ। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई सन 2015 को की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस अभियान के माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि नागरिकों को सुविधाएं आसानी से मिल सके। मित्रों, आज के समय में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, संचार और सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है। साथियों, डिजिटल इंडिया पहल के कारण हम घर बैठे ऑनलाइन भुगतान, बैंकिंग, टिकट बुकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं ने भी हमारा जीवन आसान बनाया है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने नकदी पर निर्भरता भी कम की है। मित्रों, डिजिटल इंडिया पहल भारत के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ये देश को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि सरकार और नागरिक मिलकर इसके उद्देश्यों को सफल बनाते हैं, तो हमारा भारत डिजिटल क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो सकता है। तो श्रोताओं, ये था डिजिटल इंडिया पहल। बातें और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म दाग द फायर का ये गीत कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

किसी कवि ने क्या खूब कहा है, जिंदगी अनुभवों की वो यात्रा है जहां हर मोड़ पर एक नया पन्ना खुलता है। कोई पन्ना हंसी से भरा होता है तो कोई आंसुओं से भीग जाता है। कुछ पन्ने बहुत छोटे होते हैं जो एक पल में गुजर जाते हैं, और कुछ इतने गहरे होते हैं कि सालों तक साथ रहते हैं। लेकिन हर पन्ने में एक चीज़ ज़रूर होती है, वो है एक सीख, और हर सीख से जुड़ी होती है एक कहानी। यही कहानियाँ हमें बनाती है, तोड़ती है और फिर से जोड़ती है। इसीलिए जब अगली बार जिंदगी हमें किसी मोड़ पर रोके तो घबराना मत, शायद वो अगला पन्ना हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी होगा। तो श्रोताओं, बातचीत और भी करेंगे, आइए एक बार फिर चलते हैं रंगमंच की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म खट्टा मीठा का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं वृक्षारोपण की। श्रोताओं, वृक्षारोपण का अर्थ है पेड़ लगाना और इनकी देखभाल करना। ये पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य उपहार है। ये हमें शुद्ध वायु, फल, फूल, लकड़ी और औषधियाँ प्रदान करते हैं। मानव जीवन के लिए वृक्षों का बहुत महत्व होता है, इसीलिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना आवश्यक है। मित्रों, वृक्ष पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है। वृक्ष वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। इसके अलावा अनेक जीव जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। साथियों, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है। इससे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही है। इन समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण के माध्यम से ही किया जा सकता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। दोस्तों, वृक्ष हमें छाया, फल, ईंधन और लकड़ी प्रदान करते हैं। वे वातावरण को ठंडा रखते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं। वृक्षों के कारण वर्षा का संतुलन भी बना रहता है और भूजल स्तर में भी सुधार होता है। वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं, जबकि हमारी जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना और उसकी देखभाल करना चाहिए। यदि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा। इसीलिए हमें वृक्षारोपण को जन आंदोलन जरूर बनाना चाहिए। तो मित्रों, चर्चा और भी करेंगे युवाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। आइए अब चलते हैं एक गीत की ओर। लीजिए अब सुनिए फिल्म जहर का ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के

0: पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेहनत से ही सफलता पक्की होती है, युवाओं से ही देश और समाज की तरक्की होती है। साथियों, जिस तरह से एक इंजन को चालू करने के लिए ईंधन जिम्मेदार होता है, ठीक उसी तरह युवा राष्ट्र के लिए। ये युवा वर्ग हमारे देश के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश का सर्वांगीण विकास यहाँ रहने वाले लोगों की शक्ति और क्षमता पर निर्भर करता है। इसमें मुख्य योगदान हमारे राष्ट्र के युवाओं का होता है। श्रोताओं, जब युवा अपने प्रयासों के साथ पूरी ईमानदारी से काम करता है, तब वो प्रौद्योगिकी, शोध, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्र को उस मुकाम पर ले जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारे देश के युवा अगर अपने सभी प्रयास उचित दिशा में लगाते हैं, तो वास्तव में हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट बन जाएगा। मित्रों, हमारे देश को विकासशील देश बनाए रखने के लिए समय समय पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते रहना चाहिए। युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए हमारे देश में कई संगठन काम कर रहे हैं, क्योंकि यही युवा बड़े होकर हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे। तो दोस्तों, चर्चा और भी करेंगे युवाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। लीजिए, अब सुनिए फिल्म ऐतराज का ये गीत।

दोस्तों, आइए अब बात करते हैं बुजुर्गों के सम्मान की। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर है। इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, ज्ञान और परिश्रम से परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य और संस्कार है। मित्रों, बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान का भंडार होते हैं। वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं और सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनके अनुभवों से हम अनेक गलतियों से बच सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें बुजुर्गों के साथ प्रेम, आदर और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। इनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और इनकी आवश्यकताओं का ध्यान भी रखना चाहिए। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में इनकी राय का सम्मान करना चाहिए। इनके साथ समय बिताने से इन्हें खुशी मिलती है और परिवार में प्रेम बना रहता है। साथियों, जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उसे समाज में भी सम्मान प्राप्त होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन में सफलता और सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। इनके सम्मान से परिवार में एकता, प्रेम और सद्भाव हमेशा बना रहता है। श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इनका सम्मान करना केवल हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, जबकि हमारी संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हमें सदैव अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और इनकी सेवा करके इनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इससे परिवार और समाज दोनों मजबूत बनते हैं। तो मित्रों, बातें और भी करेंगे युववाणी कार्यक्रम को जारी रखते हुए। आइए अब सुनते हैं फिल्म मिस्टर आशिक का ये गीत।

श्रोताओं, हमारा राज्य राजस्थान भारत का सबसे रंगीन और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ की परंपराएं, वेशभूषा, संगीत और नृत्य इसकी सांस्कृतिक पहचान हैं। राजस्थान का हर क्षेत्र अपनी विशिष्ट लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थली जीवन की कठिनाइयों के बीच भी यहाँ के लोग अपनी खुशियों को लोक नृत्य और लोक गीतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो मित्रों, आइए अब बात करते हैं हमारे राज्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की, जैसे घूमर नृत्य। साथियों, घूमर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय नृत्य है और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर शब्द घूमने से बना है, जिसका अर्थ है गोल गोल घूमना। महिलाएं गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य मुख्यतः विवाह, तीज, गणगौर और होली जैसे पर्वों पर किया जाता है। कालबेलिया नृत्य। दोस्तों, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया या सपेरा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। इस समुदाय के लोग सर्प पकड़ने और इनसे खेल दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इनके नृत्य में भी सर्प जैसी लहराती मृदु और लचकदार गतियां दिखाई देती है। नर्तकियां काले रंग के लहंगे और घाघरे पहनती है, जिन पर चांदी की झिलमिल कढ़ाई होती है। ये पोशाक भी सांप के समान दिखती है। ढोलक, खंजरी, पुंगी और बीन जैसे वाद्य यंत्रों के साथ ये नृत्य किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में भी शामिल किया है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का गौरव है। तो श्रोताओं, बातें और भी करेंगे, आइए पहले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत।

दोस्तों आइए अब बात करते हैं टुडेज हिस्ट्री यानी आज के इतिहास की। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1660 में मुगल बादशाह औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम का जन्म भी हुआ था। 30 मई के दिन ही सन 1987 में गोवा को भारत के राज्य का

दर्जा भी मिला था और गोवा भारत का 26वां राज्य बन गया था। आज ही के दिन सन 1998 में पाकिस्तान ने अपना छठा परमाणु परीक्षण भी किया था। मित्रों, 30 मई के दिन ही सन 2012 में विश्वनाथ आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन भी बने थे। आज ही के दिन सन 1606 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का निधन भी हुआ था। 30 मई के दिन ही हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस हिंदी के पहले साप्ताहिक पत्रिका उदंत मार्तंड के प्रथम प्रकाशन के अवसर पर मनाया जाता है। तो साथियों, युववाणी कार्यक्रम के आखिर में आइए चलते चलते सुनते हैं फिल्म बंटी और बबली का ये गीत।

0: कारे कारे नैना।
1: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने साथी करण वर्मा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव

926.7 नैनोमीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या की 6 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। तत्पश्चात 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

संध्या 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जानकारी राजस्थान की विरासत, सोनरगढ़ का किला, खेती में पशुधन की उपयोगिता, हरी खाद, ढेंचा व उसके फायदे, इसके अलावा उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधित जानकारी भी दी जाएगी।

संध्या 7:45 पर भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म की जानकारी और कुछ गीत।

स्पोर्ट्स कैन, ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। समाचार संध्या का वक्त रहेगा रात्रि 8:45। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 9:00। सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद गजलें आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती अनुप्रसारित किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा।

रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। हमारी आज की इस सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

हिन रोटियां मक्खन ता पच्छी दे छोड़ लाल छाणा भी। फ्रिज विच लस्सी बड़ी पई है, बालका आवन ता दे देवे। नीलम किचन विच गई पानी पीता ता झाई कु सोचन लगी, ओ झूठ बुलेंदी पई हाई, मेरी सच कु कह नहीं पता, मैं किवाड़ दे पिछू खलोई पई हां, ओ ता मेरी तारीफ करेंदी पई हाई, झाए मेरे कार विच रोला पावन वास्ते झूठ बोलिया। ओ माता रानी, अज तो कसम खांदियां किसी दी गल दा विश्वास ना करे सा, मेरी सस्ता लखा विच हिखे, बेबी मेरी मां को भी वतके है। वेला गुजरदा गया, बालका भी वड्डे थी गए, नीलम बेबे दी सेवा करनी, सारी गल पुछ के करनी। हिक जिहाड़े बेबे बबलू को आख्या, भेड़ा को सिडा घिन मिल वेसी। भेड़ आई सारे बेबे दे पलंग ते बागिए। बेबे नीलम अलमारी खोल, हिक पर्ची पई है कागज दे थल्ले, पढ़ घिनो सब कुछ लिखिया होया है, हां ते वेल ना मेरा हां कम दा वेंदा है। नीलम सुनो जी, बेबे को कुछ थींदा पिया है, डॉक्टर को दिखाल देवो। बेबे नीलम दा हाथ पकड़ के, नहीं नीलम सुन, तू ता बबलू हुन सारिया कुछ देखना है, सब दा ख्याल रखी मेडी आवन वाली नू दावी, बहु सारा प्यार देवे उसको, ओ भी पराए घर तू आंदी हिन, नवा पौधा होंदा है ना, उसको भी पानी देवना पौंदा है, ता ओ भी फल देंदा है, नवी नू भी प्यार नाल सीचना पौंदा है, तू ता मेडी बहु स्याणी धी है, सब कर घिनसी जेड़ा पर्चे विच लिखिया होया है, सब कुंडे देवे। बेबे दी सासा उखड़न लगदी हिन, बबलू कार विच घत के डॉक्टर को दिखावल, हस्पताल घिन गिए, डॉक्टर आईसीयू विच भर्ती कर देता। सारे बार बाक इंतजार करेंदे रहे, दू ज्याड़ा दे बाद बेबे बच न सकी। कुछ सब कुछ बबलू नीलम किता, घर खाली थी गया, नीलम बेबे को याद करके बहु रोंदी हाई, बे बेकार दा खंबा जो हाई। हिक साल टूर गया, पता ही कहनी चलिया, नीलम बबलू को आख्या, सुनो गोपाल वड्डा थी गया है, व्याह दा कुछ सोचो। बबलू ना नीलम, पहलू सिया दा व्याह करे सा, करना है गोपाल दा बाद विच करे सू। नीलम सुनो, सिया दा लास्ट ईयर है, अपने पैरा ते खड़ी थी वंजे, वत करे सू। बबलू ठीक है, कोई गल कहनी, गोपाल को मैं गल करे सा। नीलम जी, बबलू नीलम सम पिए वल्ले। बबलू गोपाल गोपाल किथे गया, ऑफिस नहीं बंजना, कुछ गल भी करनी है, नाश्ता ठंडा थींदा पिया है। गोपाल आंदा पिया जी, अड्डे थी गई है। बबलू सुन, कोई तेरी नजर विच हे तान दिस दे, प्यार शिया थिया होवे ता असा हुन नू लभनी है। गोपाल एक ही अखेंदे पे हो, अजे कहनी करनी, रुक के करे सा। बबलू डे घिन कोई होवे ता। नीलम ता बबलू डोवे हसन लगे, गोपाल भी मुस्कुरा देता। नीलम सुनो जी, हुन नू लभना शुरू करो, घर विच नवी चहल पहल, सिया देवी नवे नवे सुपने। बबलू चुप करो सारे, कुड़ी लभी कहनी, ए करे सा ए करे सा। हिक जिहाड़े बबलू दा मामे दा पुत्तर ने हिक रिश्ता दिसया, घर विच कुड़ी दी फोटो देख के पसंद आ गई। सिया गोपाल को फोटो दिखाल के अखेंदिए, देख पापा जी को भी पसंद है, माँ को भी नूरानी पसंद है, मेकू भरजाई पसंद कहनी, तू देख घिन वतना आखी, मैं अपनी पसंद दिसी कहनी। हाँ करनी है ता कर घिन, मेडा की होर जोर नाल हसन लगी, ता फोटो गोपाल को दे देती। नीलम सिया चुप थी वंज, सिया कोई गल नहीं माँ, भेण भेरावा दी गल है, सब चलदा है, सारे अपने अपने कमरे विच सम वेंदे हिन। गोपाल दे कमरे दी लाइट बहु देर तक जल्दी रही। सवेरा थिया बबलू गोपाल नू आगदा है, गोपाल नाश्ता तैयार है, आंदा क्यों नहीं। सिया पापा जी राती सम्या कहनी, फोटो नाल गल करेंदा पिया होसी। गोपाल सीढ़िया दो उतरते हुए चुप थी वंज, बिल्ली राती कोलो म्याऊं म्याऊं करेंदी पई है, हिक लगे सता चुप थी वेसी। सिया पापा जी देखो, अजे कुड़ी ता पत्ता कहनी, हुणे कोल मारण दा इरादा है। बबलू सिया होर गोपाल कुड़ी पसंद है। गोपाल तुसा देखो।

0: खुश थी गे बबलू मामे दे पुत्तर को फोन किता, भिरावा जी गल अगे बधाओ, गोपाल को कुड़ी पसंद है। सब मिलदे हैं शगुन, दोना दे माँ प्यो देंदे हैं। गोपाल हिक गल गोपाल अखेंदा है, हिक गल आखनी है, साकू डाज शोर शराबा नहीं चाहिदा, हिक कुड़ी चाहिदी है। नीलम ता बबलू गोपाल दा मुंह डेक दे रेगी है। गोपाल आखदा है, माँ पापा जी मैं बहु ता कहनी मासा जिया कमा घिणदा हां कि असा सारिया खा सकूं। साकू कुड़ी चाहिदी है, डाज कहनी व्या भी सिंपल। सारे गोपाल दी गल मन के राजी थी गिए, शादी भी सिंपल थई। गोपाल सारे रिश्तेदारा को दोस्ता को हिक शानदार पार्टी दित्ती। माता रानी दी कृपा नाल सारा कम ठीक ठाक थी गया। हनीमून ते भी गए दोनों कुछ महीने बाद। नीलम, सुनो जी, गोपाल दे ऑफिस दा टाइम थी गया है, आवाज जे वो नाश्ता तैयार है। बबलू, की गले देखदा हां, नू वल्ले उठदी कहनी। नीलम, कोई गल नहीं, अजे नवी है। बबलू, मतबल तू ही करेंदी रासी। नाश्ता करके गोपाल ते बबलू ऑफिस गिए। नीलम गुड़िया को आवाज दित्ती, ओ थल्ले आई कहनी, वत नीलम नाश्ता करके कम वालिया को कम करा के दुपारी दीवी तैयारी कर गित्ती। ता गुड़िया थल्ले आई। नीलम, गुड़िया मैं आवाज दित्ती हाई, बहु देर थी गई, तबीयत ता ठीक है? गुड़िया, हां जी, अज अख नहीं खुली, अज किटी पार्टी भी वंजना है। नीलम, किस वेले? गुड़िया, 3 बजे। नीलम, अरे हिक ता वज भी गया, धागिन खाना भी बनिया पिया है। गुड़िया, मेकू नहीं खावना, उत्ते चली गई। ओ धा के तैयार थी के टुर पई, सस को कुछ भी नहीं आखिया। उसको कोई मतबल कहनी, घार दी कम दी सस दी प्यो दी आदमी दी, कदी नाल खावना कदी नहीं, अपनी मर्जी नाल रावना। गोपाल गुड़िया दी चिक चिक थीवन शुरू थी गई। गुड़िया कुछ भी समझन को तैयार कहनी, आग दी मेकू कम नहीं थींदा, मम्मी जी भी नहीं करना ते नौकरानी ही को रख घिरनो। गोपाल को बहु दुख थिया कि माँ ही सारे कम करेंदी है, मेकू पता ही कहनी। गोपाल गुड़िया दी लड़ाई धीरे धीरे बद दी गई। गोपाल गुड़िया नाल नाल नहीं रामना चाहते हन। हिक जिहाड़े गुड़िया बहु चिखी, बैग घिन के थल्ले आ गई, अज मेकू छट के आओ, हुण मेकू इत्थे तुसा सारिया दे नाल नहीं रावना। नीलम, गुड़िया दहत थमिया आखण लगी, तू मेरी नूह है धी भी है, तू जिथे वंजना है मैं तेरे नाल वेसा, तू जिथे रावना चाहती है उथा तेरे नाल रहसा, कोई गल कहनी। मां प्यो दा घर छट के आई है, हुण तेरा घर ए ही है, वत भी तू नहीं रावना चाहती, मैं तेरे नाल वेसा जिथे तू वंजना है, आख होटल चलिए। सोच गिन मैं के नहीं वंजना, तू धी है धी नाल माँ भी वेसी, दिया घर छट के नहीं वेंदी। गुड़िया सब देख के जोर जोर नाल रोवन लगी, माँ मे को माफ कर रे वो, मैं ता तुसा नाल कदी गल भी कहनी कित्ती ना कदर कित्ती, तुसा वद भी मेरे नाल टुरन दी इच्छा रख दे हो, ए ता मेरी माँ भी नहीं कहनी कर दी। तुसा मे को रोज वड़ा बड़ा के खवाया, कदी भी जावन लई मनन कहनी कित्ता, जिस वेले उठदी हां तुसा कुछ भी नहीं आख्या। होर अज गुड़िया नीलम दे पैरा विच बा गई। नीलम गुड़िया को हां नाल लाया, आख्या तू मेरी धी है नूह कहनी। दूजा असा औरता हां बेबे आग दी हाई, नवा पौधा जद उखाड़ कर नवी जगह ते लगाया जांदा है, ता उसको भी पानी देवना पौंदा है। तू भी ता नवा पौधा है, प्यार नाल सींचा मेडा कम है, ताही ता तू घर विच फल देसी, असा जिथा रावणा है नाल रावणा है। गुड़िया, मां हुण मैं किथे नहीं वंजना, तुसा सारिया दे नाल रावणा है। नीलम बहु खुश थई, सबको आवाज दित्ती, गोपाल किथे गया, थल्ले आ, सिया प्यू नू आख असा सारे आइसक्रीम खावन वंजना है, साड़ी गुड़िया सारिया दे नाल आइसक्रीम खावन वेसी, अज मेरी धी घर वापस थई है, समझे है कि कहनी, जल्दी आ जाओ सारे आवंजो।
1: हुणे तुसा सराय की लोक कहानी सुनदे पए हा।

असा निंद्र आलस दे दुश्मन को पर हमार सट देख सूरज खड़ोता है तेरी चौखट। निंद्र आलस दे दुश्मन को पर हमार सट देख सूरज खड़ोता है तेरी चौखट।

सारे असां। श्रोताओ, एक होर रचना मेरी जिंदे च मैं एक मुल्तानी कहावत दे नाल, मुल्तानी जेड़े अखाण हुंदे उंदे नाल शुरू कीता है कि शूम दा लगदा है डोड़ा, शूम दा लगदा है खेंदे सब डोड़ा, होर सखा दा लगदा है थोड़ा।

साबण मल मल, साबण मल मल कुछ कुछ सुबी धांदे ओ। मन ते मन मन मैल चढ़ी कै हुकू घरोड़ा। साबण मल मल कुछ कुछ सुबी।

0: श्रोताओं शुक्रिया, बहुत बहुत, दोबारा फिर मिलसू।
1: ए हई डॉक्टर राजेश कुमार दा सिरायकी कावे पाठ ते हुन प्रोग्राम दे अखीर च सुनेंदे हां हिक सिरायकी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराय की। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन के बीच की कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंगभेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। व्यास नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किस्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट

0: newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डीरेगुलेशन फेज वन के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूट कर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है, वहीं तापमान में थोड़ी आई है।

0: में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
1: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले दो दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आम जन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौर वासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के विश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित

0: भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री विश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहोर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आम जन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

खास समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारतीय फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियां ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माए आज दूजा दिन ही धूलो उड़बा सागे आंधी चाली सरहदी हलका माए रेत रात तूफान उस जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारतीय फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करण बाबत ही तैयार है। वे आज पुणे रा खड़कवासलारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माए 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माए बोल रहा है। ई मौके जनरल द्विवेदी कहो के ऑपरेशन सिंदूर उकसावा रो जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवन रा भारत रा बूता रो दर्शाव कीनो है। वह कहो के ओ अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवन वाला कैडेटाओं व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखन बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स ने पास करन वाली महिला कैडेटां री सराहना करता थका कहो के हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशा रा 21 कैडेटां ने ई डिग्री दीरी जी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान ने खेतां किसाना और गांवां ने जोड़बा रो मोटो अभियान बनावन बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माए खेत बचाओ अभियान री तैयारियां रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। वे कहो का ई अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी

0: काम लेवन किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारियां राय टेम सर देवन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो गांवां री जनता ताई सीधो पुगावनु है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश माय चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय काल समारा 11 बजे विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इनरो प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री रा दफ्तर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन AIR ऐप माथई करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश माय चुनाव संविधान चुनावी कानून रे मुजब और साफ कोई सागे कराया जावे है। वह आज नई दिल्ली माय निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करण वाला वकीलां रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन माय बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो कि लोकसभा चुनाव रे दौरान साफ गोई जवाबदेही और निपक्ष तरीकों वोट देवण तय करण सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात कराया जावे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून नू काम करन लगेला। विद्यार्थियों री परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावन री साफ प्रक्रिया तय करण सारू ओ पोर्टल शुरू करियो जा रहे है। जयपुर माए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तहत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावन सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कानियों मेलर 1 जून खास शिविर लगाया जावेला। 3 दिन रा आ शिविरा माए पात्र लोगों ने कर्ज री दूजी किश्त दी जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका माए काम करण वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पुगावन रा काम माए खास कड़ी बताया है। वह आज जयपुर माय राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन माय बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी माई नगर पालिका कर्मचारियां रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश माय साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दीनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो,
0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगला री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य रा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9,000 अर्जियां मायू 6,032 मंजूर कर ली रिजी है। अर्जियां मंजूर करण रा काम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2,000 अर्जियां मायू 1,332 ने मंजूरी दे रिजी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियां ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजन रो ऐलान किन्नो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकम रे मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक ऊ सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करियो जावेला। नवाजी जावन वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावण देवण रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश

0: परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला में प्रदेश में आई नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास रो कार्यक्रम रखी चियो। इन में विद्यार्थी, शिक्षक और जनता उमाव सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सोगन लीनी। नागौर के न जोधपुर बीकानेर गेला में थे आज दोपहर कार रे ट्रक री फेंट में आ जावनो चार जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डूकोसी और राजूवास गांव बीचे व्या हादसा रे कारण कार में सवार दो महिलावां और एक बच्चा समेत चार जना री मौत वेगी। अरब मौसम, प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहद नू लागियोड़ा और उत्तराद आतुणी हलका में आज दोपहर री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिला में आई जोरदार आंधियों दिन में आई अंधारों महसूस वेमण लाग्यो। रेत रात तूफान री शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलाओं भी जो थोड़ी देर में आई आरएसआर रा मोटा हलका माय पसर गयो। माणा चूरू खबर नवीस बतायो कि रेत रात तूफान जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप गर्मी का असर रहा जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: कई थोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजो जिणो धूला रो गुबार छा जावन रे कारण दूर ताई नजर नहीं आयो। इन दौरान लोगां ने दिन में आई गाड़ियां री लाइटा चासनी पड़ी। जोरदार बायरो बाजनो कई छोड़ा रूखड़ा टूट गया और होर्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति माथे असर पड़ियो। राजधानी जयपुर में आई सिंजानी पोर बादला मंडी गया, धूलो उड़ियो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश हूँ पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर, प्रदेश में आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़बार आसार जताया है। केंद्र आंधी चालन, जोरदार बायरो बाजण और बिजली चमकण री बगत सावचेती राखण सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है। श्रीगंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावण रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावण, स्टेशन में दाखिल वेवण और बाहर जावण रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावण, गाड़ियां उबी करण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी चिया जा माथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो। इस आगई वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीनाई लगाई जा रही है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजा आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूजा दिन धूलो उड़बा सागे आंधी चाली। सरहदी हलका में रेत रात तूफान जिंदगी माथे असर पड़ियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।

0: राम राम नवीन भाई, राम राम शिरपाल भाई, राम राम।
1: राम राम रामेश्वर भाई, क्या हो आज थे?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आज तो आपने शिरपाल भाई भी आइडा है सागे, और थे सुनो क्या हो।
1: ये राम राम ही को नहीं कर रहा, देखो
2: देखो सा सारे सुनिया ने मोकला मोकला राम राम। अब दो बडेरा आदमी के बोलता हुआ नहीं देना, बिचाले नहीं बोलना चाहिए जी।
1: ये हिसाब तो मन्ने नहीं बोलना चाहिए, बडेरा तो थे हो
2: नहीं
1: है?
2: नहीं बात हुए अनुभव की, अपन जिक्र करता रहा थे इन
1: अच्छा
2: बात ने, मान लियो नवीन।
0: नहीं नहीं सही है, और बडेरा को थोड़ा सा ख्यांत भी रखना चाहिए। पर
2: राखना
0: ये है कि चौपाल का माँ आपा के है कि जिकी बातें करनी है बडेरा वाली भी करनी है कि खेत क्यारी की भी करनी है। और की आपने की है का आज देखा नहीं नवीन भाई, तो आपने मौसम जो है वो भी बदल रही है ना।
1: हमारा श्रीपाल भाजी तो 3 दिन पहले ही बता दियो कि मौसम खासी पलटी
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह छांटा छिड़को भी हुए है श्रीपाल भाई।
2: बिल्कुल मौसम विभाग देखो आपने जानकारी देव तो रहे समय समय पर, तो आप किसान भाइयों तक भी आज जानकारी पहुंचावा, और आज बात अड़ी देखो साची भी होगी।
1: आज हमारे मोबाइल में नहीं, एक इमरजेंसी मैसेज मैसेज आयो यहाँ कोई,
0: अच्छा क्या
1: जिसमें
0: है।
1: लिखड़ हो कि आना जा 3-4 घंटा में तेज आंधी बरसात ओला और तूफान आ सके और 100 किलोमीटर तक की हवा चल सके। तो जिका भी अपने श्रोता भाई सुन रहे हैं, गांव में रहे, मान लो कोई खेत में है, तो भी थोड़ा सावचेत रहे है।
0: बिल्कुल सावधानी रखनी जरूरी है, मौसम पलटी खानता टेम को लगावानी श्रीपाल भाई जी, नवीन भाई है
1: बिल्कुल सही बात है
0: ना,
1: सा।
0: ध्यान रखना जरूरी है।
1: तो आ बात तो बातचीत तो करते रहे से। आज अपना सागे देखो बहुत ही जरूरी बात करने वास्ते
0: हाँ पावना बुलाएड है आज तो।
1: पावना बुलाया है,
0: हाँ
1: कौन आया
0: बिल्कुल,
1: थे बताओ फिर मैं बताऊं।
0: नहीं नहीं थे बताई दो, थे आपने सियाणा मिनख हो।
1: डॉक्टर आर के दादी चाया है, कठुआ
0: हाँ
1: आया बताऊंगे,
0: हाँ हाँ
1: सरदारगढ़ गो राज्य
0: कृषि
1: बीज फार्म
0: फार्म,
1: है वो।
0: हाँ बीज फार्म है,
1: हाँ
0: और
1: बीज
0: बड़ा
1: फार्म है।
0: सोचेड़ा
1: डॉक्टर
0: इंसान
1: साहब
0: है।
1: राम राम।
3: राम राम राम राम
1: तो डॉक्टर
3: डॉक्टर
1: साहब
3: साहब,
1: बीज फार्म ही नाम है क्या, नाम गलत ले लियो?
3: फार्म रो नाम है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़।
1: आ बात तो देखो रामेश्वर भाई, पहले कि अंग्रेजी में
0: बिल्कुल
1: हमारे मामलों गड़बड़ हो जाए देखो
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, और आंगो घणो सारो मोकलो सारो स्वागत है आज आपने सागे।
1: हाँ तो आना पा बातचीत करेंगे आगे, पहला एक शुरुआत भजनू कर दिया तो ठीक।

0: कौन रहेगी?
1: बिल्कुल, क्योंकि संध्या को टाइम है और भजन
0: हाँ
1: भाव भी होना जरूरी है नवीन भाई।
0: हाँ तो भजन तो श्रीपाल भाई जी का है कि मेरे को बढ़िया शाम रो भजन चला दें तो बढ़िया है, क्यों?
2: हाँ बिल्कुल, भजन है सुना शाह,
0: हाँ
2: तो पहला तो एक गीत सुन लिया मेरो जी
0: पहला
2: तो।
0: गीत गए
1: हाँ सुनाओ
0: ठीक है,
1: सुनाओ,
0: के
1: आन
0: टुक
1: दो
0: पड़े
1: आन
0: तो
1: दो।

0: हाल रही हो ओ मारे पीलो झटपटिया दूरी भोरियारा काका ओ मारे ओ दुखेरे।
1: अरे कालूराम जी अबे तो लड्डू खवा दो।

0: राम राम।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल, आप गीत सुने और गीत बड़ो फूट रहो हो नवीन
0: गीत
1: भाई।
0: गीत तो देखो बहुत ही फूट रहो। आज देखो अपना सगा जी के मेहमान आए नहीं, बे आया है सरदार गढ़ू। तो आऊँ आप बात कर सियाँ आज प्राकृतिक खेती के बारे में, क्या प्राकृतिक खेती करी जाए, अरेगा के फायदा है के नुकसान है। अरे जिका किसान भाई है, मान मान लियो काल ने कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपने कहना बिरो है। आज सवाल आया है कम कम नहीं नहीं करता 20।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: जो किसान भाई है नी, मैं पूछने ला रहे हैं कि प्राकृतिक खेती किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब सारों पहले मैं थारा हूँ, राम राम तो करी ली, अब मैं थारा हूँ वही पूछ सियाँ कहते कम शब्द माना, पहले आप बता दो कि प्राकृतिक खेती हुए की है।
1: प्राकृतिक खेती जी की है, बिना आपा दो अन्य नाम सु भी ले सका हाँ।
0: अच्छा
1: पहलो नाम है कर्ज मुक्त खेती
0: हाँ
1: और दूसरो नाम है लाभदायक जीवाणु वाली खेती। अच्छा
0: अच्छा
1: अच्छा यानी हरित क्रांति रे बाद में किसान भाई कहीं हैं कि खेती रे माय

0: ज़्यादा उपज प्राप्त करने वास्ते और ज़्यादा धन प्राप्त करने वास्ते अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करियो।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप देखने ला रहे हैं आपने रासायनिक की खेती है नहीं बन तो एक तरीके से सीरे लगा रखे हो सारो काम।
2: अब बात तो सही है, देखो रासायनिक खेती हजार तरह का नुकसान है, कई तरह की बीमारी हुआ है और मैं तो कुछ का मित्र कीट है नहीं बे और खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल खत्म हो गए
2: हैं। तो ये जी हाँ, हमारे कने एक सवाल है, देखो दीपेश वर्मा है ये छत्तीसगढ़ सवाल भेजे सिद्धू ही, एक है कि हमारा गाँव में कई लोग के जैविक खेती क्या करता बाकी उपज जिकी है नहीं बा रासायनिक खाद के उपयोग अगर तुलना करा तो बा कम होगी बे बच्चा क्या करा बाकी बताओ, क्योंकि भाई क्या है कि हमारी जी की मिट्टी है नहीं बा रासायनिक खाद की ही आदि होगी।
0: पहली तो मैं थाने वो बताना चाहूँ कि जिको वो प्रश्न करियो है वे जैविक खेती रो नाम लियो है और आपा प्राकृतिक खेती रो बात कर रही हैं।
1: अच्छा, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में के आपने मैं फासलो है डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा पहला बता दियो नहीं तो ठा लाग जे। अच्छा।
0: जैविक खेती और प्राकृतिक खेती रे मायने बहुत अंतर है। प्राकृतिक खेती रे मायने ज्या मान लो आप दूध सू दही जमावा जने आप थोड़ो सोक जावण गाला और दही जम जावे
1: बिल्कुल,
0: तो मैं पहले ही बतायो था ने कि प्राकृतिक खेती है जिकी लाभदायक जीवाणु वाली खेती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इरे मायने आपा काई करा के लगभग 10 कुंटल एक हेक्टर रे मायने घन जीवामृत रो प्रयोग करा।
2: अच्छा,
0: और दूसरा ही प्राकृतिक तरीका अपनावा, बीजामृत रो प्रयोग करा, जीवामृत रो उपयोग करा। तो बीसू काई है कि अपने मृदा रे मायने कार्बनिक पदार्थ रे मायने वृद्धि हुए।
2: हाँ।
0: दूसरो थे देखियो वेला कि किसान रे खेती रे मायने लागत बहुत बढ़ गई,
1: बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा।
0: तो अच्छा। प्राकृतिक खेती रे मायने आपा ने वो ध्यान रखना पड़े कि किसान री लागत नहीं बढ़े।
2: नहीं बात तो थारी सी जी, मतलब जी आपने खेत में जी चीजें हैं बंग उपयोग कर लिया जी आपने, देखो गाँव हीरावाली हूँ फाजिल का पंजाब पूछ रहे है सुभाष गोदारा, एक है कि जी मान लो प्राकृतिक खेती में करा और घर जैविक खाद मान बनानी है तो सब्जी फल का छिलका है ये सब चीजें हमें जैविक खाद में बनास कहाँ के किया बनास का कोई तरीको बता दो माने कोई है।
0: जैविक खादरो नाम लियो जैविक खादरे मायने बना सका।
2: हाँ।
0: लेकिन प्राकृतिक खेती जिकी है बिरे मायने अपने खेत में ही जिका संसाधन है जहाँ बेसन है जहाँ गुड़ है गायरो। हाँ। गोबर है
2: तो ए जिकी बात बताई बात तो सही बोली लेकिन मेरे को नाम जैविक खेती को नहीं बा है प्राकृतिक खेती
0: बा। हाँ, नाम जैविक खेती लियो है लेकिन प्राकृतिक खेती रे मायने अपा खेत रे मायने जिका उपलब्ध है गाय रो गोबर है गोमूत्र है गुड़ है बेसन है।
1: हाँ। घर बताऊ जी की चीजें हैं लगभग
0: बीरो प्रयोग कर अपा जीवामृत घन जीवामृत बनावा और बीरो उपयोग अपा खेती में करा और अपा ई बात रो ध्यान रखा के ज्या मान लो मित्र कीट है वे अपने वास्ते अपना सहयोगी है अपने फसल रे मायने सुरक्षा करे।
1: बिल्कुल,
0: और आपणो जिको केंचु है देसी केंचु है बिने भी आपा ध्यान रखा बिने आपा खेती बाड़ी रे मायने बढ़ावो देवा। बीसू कहीं है के मृदा रे मायने जल धारण क्षमता बढ़े।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ठीक है, और मृदारी पीएच जिकी है बा कम हुए। दूसरो पर्यावरण रो भी आपने ध्यान रखना चाहिए
1: जरूरी ऐसा पर्यावरण को तो आपनो जीवन जो है वो पर्यावरण के साथ जुड़ेड़ो है।
2: बिल्कुल,
0: जिको आपा अंधाधुंध रासायनिक खादा रो प्रयोग करियो वो आपने मायने प्रकृति रे विरुद्ध कार्य करण सु जिकी विकृति पैदा हुई है। और जिको आपना संस्कार रहा
2: जी
0: आपानी जिकी संस्कृति प्रकृति रे सागे चालन रही पर्यावरण रो ध्यान रखन रही।
1: अब तो क्या डॉक्टर साहब आपने किया जका मिनक है भी प्रकृतियों की एक पाउंड आगे हो रही है।
0: हाँ बिल्कुल।
2: तो डॉक्टर साहब देखो आपने कहना गाँव घमंडियों है ये जगदीश ढुकिया ये पूछने ला रहे हैं जी मान लो हमारे प्राकृतिक खेती में भी घनी करनी चाहवा पर मान तो कि टेक्निक को नहीं आवा, एक है कि मान लो गुआर बुनो है अरबिंग बाद में मान लो कंबाइन मशीनों निकला है तो बस की कटाई के बाद में कचरो आए अबे मैं गोबर कितों को डालना किया बनावा के बनावा आगे सुनो लोगों नहीं आ रही है बात।
0: बिल्कुल, आ बात समझ में नहीं आ रही तो जिका प्राकृतिक खेती रो ज्ञान रखे।
2: हाँ।
0: जहाँ आपने सूरतगढ़ रे माई नहीं तीन केंद्रीय राज्य फार्म है सूरतगढ़ सरदारगढ़ जैतसर।
2: अच्छा।
0: राष्ट्रीय बीज निगम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार रा तीन केंद्रीय राज्य फार्म है। नियर मायने लारले दो सालों 50-50 हेक्टर रे मायने प्राकृतिक खेती सफलतापूर्वक करी है।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो कोई भी किसान भाई है वो यहाँ फार्मा पर आर प्राकृतिक खेती की जानकारी प्राप्त कर सके। दूसरा अठे जी का अधिकारी है

0: वह उदयपुर रे मायने जिका है बट हजार ट्रेनिंग भी ले रहा है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रे मायने जार अच्छा। ट्रेनिंग ले रहा है तो अठे आर थे अधिकारियां सु ज्ञान प्राप्त कर सको किया आपा प्राकृतिक खेती कर सका किया आपा खेती रे मायने लागत कम कर सका और किया आपने मृदा रे स्वास्थ्य ने बढ़ा सका।
1: अब बात डॉक्टर साहब देखो थे सही बताई अभी यहाँ तो भाई अब थे सब लोग हो जिया सारा डॉक्टर हो थे जाकर ट्रेनिंग ले गए वो अच्छी बात है पर जिका आम आदमी है किसान है निबंगा सवाल देखो क्यान क्यान गया है ये अपना सादुल सर से राम कुमार रेवाड़ जी बेरो के पूछा है कह मैं कर लिया प्राकृतिक खेती थे कहो जी हाँ तो आज की मैं खाद बनावांगा प्राकृतिक अरे यूं कद यहाँ तो नहीं हो जाए कि भाई खेत में दिमक बढ़ जाए
2: वो भी एक कारण
1: है ये कई लोग मन में रहे
2: मन में है
0: हाँ, नहीं बिल्कुल हाँ। प्राकृतिक खेती से कदे ही दीमक बढ़े को नहीं अच्छा। और प्राकृतिक खेती में जिका आपा ने सिद्धांत है बिया रो आपा पालन कर सा तो आपा ने लागत कम उसी और लाभदायक जीवाणु बढ़सी
2: बिल्कुल।
0: अब मैं थाने आई बताना चाहूं कि आपा ने आपा प्रकृति रे विरुद्ध कई कई काम करियो जिका आपाणी मृदा रो स्वास्थ्य कमजोर हो गयो थे आ सुनियो वेला के मान लो कोई आदमी यही चालतो चालतो ही खत्म हो गयो हार्ट अटैक आई गया
2: हो जाए बहुत बार हुए
0: इरो कारण मुख्यतया ओ है कि जिका आपा सब्जी लगावा या आपा अनाज पैदा करा तो बीरे मायने कहीं है आपा जरूरत सु ज्यादा कृषि रसायन रो प्रयोग कर दा तो बा कृषि रसायन है वे घातक हुए विषाक्त हुए वे आपने खाद्यान्न जिका आपा मनुष्य रे ऊपर भी बीरो बुरो प्रभाव पड़े और बीसू अटैक आ जावे और वह जिका गलत रसायन है वे अपने शरीर में जावे और आदमी की जान ने भी खतरो हो जाए।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब
1: रामेश्वर भाई हाँ, एक हाँ। बात देखी कि थे अब आप शुरू में जी कार्यक्रम चालू करे हो नहीं तो वो तार तूर कोई खराब हो गयो को आप कोई दो मिनट चाल को नहीं है
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: तो श्रीपाल भाई जी रूस की बैठ गया बोल रहे को निकल गया देखो
2: भाई जी रूसो ना कुछ हाँ बिल्कुल
3: डॉक्टर साहब की बात बड़ा गौर सुन लाग रहा है यहाँ सोचा के सुनागा और गुणागा
2: गुणागा
3: रासायनिक की बात करी तो इसे एक सवाल जो है वो अपन ने पूछो है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पूछने वाला है बलकरण वर्मा आगो सवाल वो है कि जो कि आप खेती करा तो प्राकृतिक खेती हूँ ज़्यादा आप फसल को उत्पादन ले सका या रासायनिक खेती हूँ माने जी की सलाह बात है देव
0: जिका मान लो आप पहली पहली बार अगर आपा प्राकृतिक खेती रो प्रयोग करा बीरे मायने तो आपा ने एक बार उत्पादन कम प्राप्त होसी बीरो कारण हो है कि आपा इत्ता सालां सु रासायनिक खेती रे मायने कृषि रसायन रो प्रयोग करण सु आपा जिका लाभदायक जीवाणु है मित्र कीट अभियान ने आपा कम कर लिया
1: अच्छा।
0: लेकिन आपा लगातार चार पाँच साल तई प्राकृतिक सिद्धांतारो प्रयोग कर सा प्राकृतिक खेती कर सा
2: हाँ।
0: तो निश्चित रूप से अपने मृदारे मायने लाभदायक जीवाणु भी बढ़सी मित्र कीट भी बढ़सी जल धारण क्षमता भी बढ़सी मृदारो स्वास्थ्य बढ़िया होसी
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जने अपना उत्पादन भी बढ़सी किसान री लागत कम उसी और आज आप थे देख रिया हो कि किसान आत्महत्या कर ले क्योंकि मेरे खर्चो ज्यादा लाग जावे और उत्पादन धीरे धीरे कम हो रही है।
1: रमेश भाई एक कहना चाहे कि जी मान लो 100 रुपया अपनी आय हो रही है और आप प्राकृतिक खेती में अपनी आय 80 रुपया भी होगी
2: हाँ हाँ।
1: तो बेटा 100 में अपनी लागत 50 ही अडर लागत ही कोनी
2: बिल्कुल बिल्कुल नवीन भाई इन मक्की है के बा सियाणा मिन के करे नी के तेड़ी में सरसों पक्के कोनी आपने के धीरे धीरे एक बार थोड़ सो रख बगमा प्राकृतिक खेती है बा करो फिर धीरे धीरे बिना बढ़ाता जाओ एक बार चांचो को ही आपने किया सारो रकबो चुके है बिंग मा ना बिडो आपने है ना
1: सही बात सही
2: बात डॉक्टर साहब आप
1: तो बात बात ही बात करनी है को गीत सुना शो
3: नहीं हाँ, गीत की हाँ, बात तो देखो पहला थे के भजन सुनाओ
1: तो भजन तो सुनायो को नहीं
3: तो थारे सागे वादो करेडो भजन को तो अब सुना दिया
1: अब सुना दो भजन
2: सुनो भजन

0: बिल्कुल, भजन सुनियो बाबा रामदेव जी को, है ना।
1: वाह साहब, बहुत ही बढ़िया भजन हो है।
0: भजन और की अगोतर सुधर क्यों मिलना यार, है ना शिवपाल भाई जी।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो थे पूछा इतनी देर भजन चालो, जब बात पूछ लो डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: साहब
0: बिल्कुल,
1: हूँ है।
0: आपने डॉक्टर साहब जी ने तो आई बात पूछांगा के आपने जो किसान भाई लोग है बे सब्जी ने भी प्राकृतिक तरीके से पैदा कर सके के थोड़ी सी बिंगी जानकारी और दे
1: क्योंकि
0: दीजिए।
1: देखो सवाल बहुत आया, कोई पूछ रहे गुलाब,
0: हाँ गुलाब
1: गुलाब
0: भी
1: उगा
0: मिर्ची
1: लेंगे
0: है, विलियत
1: प्राकृतिक हूँ
0: भी।
1: है, सब्जी
0: हाँ
1: उगा लेंगे, पपीता उगा लेंगे, मिर्ची उगा लेंगे, तो डॉक्टर साहब आपको एक सम्मिलित जवाब दे दो कि जिकी कणक है सरसों है भाई प्राकृतिक हो सके कि सारी चीज़ें मैं प्राकृतिक कर सका।
2: बिल्कुल, आपां सब्जी प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक खेती रे रूप में सब्जी उगा सका। और मैं तो किसान भाइयों ने आ कहना चाहूँ कि किसान भाई आप रे घर वास्ते जी की सब्जी है या आप रे घर वास्ते जी को अनाज है वो प्राकृतिक खेती से ही तैयार करो,
0: बिल्कुल
2: जिके सू भी रे घर रा परिवार रा सदस्य अगर भी अनाज ने भी सब्जी ने खासी तो वह स्वस्थ रहसी, यारो शरीर स्वस्थ रहसी।
0: बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। और मन ये लगा शिवपाल भाई भी कोई बात
2: बात
0: उकड़
2: मैं
0: ला
2: तो
0: रहे।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल के सारा का सवाल तो जेका नहीं बे तो नवीन भाई बता दिया के भाई ए तरह सवाल पूछने लग रहे हैं, पर पूछने वाला का नाम जेका नहीं बे मैं बता दूं थे कहो तो।
1: बता
2: हाँ
1: दो थे बड़े रहो।
2: तो चंडीगढ़ से हूँ, आपने सवाल पूछे सतीश अनेजा ए अनारकली बाजार जगराम से, सुनील पाठक कमल पाठक गाव्या मल्होत्रा ए आगे सागे सागे गाँव खोखरा वाली गंगानगर से विनोद बारासा एर आगा साथी सारा ने रामा श्यामा लिखे सागे ए और पूछे के मूंग एर ग्वार में भी प्राकृतिक खेती से विदाई कर सका।
1: देखो अब आधा बात डॉक्टर साहब बता दी कि थे कोई भी फसल करनी है धन है थे
2: बिल्कुल
1: प्राकृतिक कर लो। मैं डॉक्टर साहब वहाँ पूछूं कि मूल सिद्धांत है के प्राकृतिक खेती को
0: हाँ
1: थे, आ
2: बेजरूर,
1: तो बताओ
2: हाँ समझना बहुत
1: बेजरूर
2: जरूरी
1: बताओ।
2: है बिल्कुल। प्राकृतिक खेती रा मूल सिद्धांत बताऊं, पहली आपने ओ बताऊं पड़सी किसान भाइया ने कि भाई आपा प्रकृति रे विरुद्ध आपा में इसी कई विकृतियां पैदा होगी
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: जिक्यों आपाणो है जिकोस उपज कम होगी,
0: हाँ कठिन कठिन की छेड़खानी तो ओड़ी है अपना सुन।
2: मृदा स्वास्थ्य ऊपर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ियो, और आपाणो जिको पोषक तत्व है मृदा रे मायने बे कम क्यों हो गया, इरे अलावा मानव स्वास्थ्य पर कई विपरीत प्रभाव क्यों पड़िया, आपा इसी कई गतिविधियां करी, इरे अलावा आपने लागत क्यों बढ़ गई खेती रे मायने,
0: बिल्कुल
2: तो इरो सबसे बड़ो कारण वो है कि पहली आला लोग जी का वे फसल काट्या रे पछे भी फसल अवशेष ने जुताई कर दे उनता,
0: अच्छा
2: बीसू
0: खेत के
2: का ही
0: माँ मिला
2: है
0: देता।
2: क्या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जमीन में बढ़ती, दूसरो आपा कहीं है कि हरी खाद रो प्रयोग पहली लोग करता,
0: करता करता
2: जहाँ मान लो ग्वार लगा दियो, मूंग लगा दियो, ढेंचो लगा दियो, बिने लगा आपा जमीन में मिला दे उनता बीसू कार्बनिक पदार्थ बढ़ता, लेकिन वो काम आज रे ज्यादा लाभ प्राप्त करने जल्दी दूसरी फसल लेवन ने आपा पर्यावरण ने कहीं कौन दे रिया, प्रकृति ने कहीं कौन दे रिया, आ धरती अपनी माँ है
0: बिल्कुल
2: आपा बिने कहीं दे कौन रिया
0: बिल्कुल।
2: कार्बनिक,
0: धरती का मोह तो आप पैदा कर नहीं ला रहे हैं, लेकिन इनकी देन कौन ला रहे
2: आपा
0: हैं।
2: लेवा ही लेवा देवा कहीं कौन
0: हाँ
2: नहीं।
0: सही है
2: डॉक्टर
0: सही
2: साहब
0: सही
2: जी आप
0: बात है।
2: बात करी थे भाई आपा दूसरी फसल लेने खातर, है तो मैं बीच में थाने बताऊं कि भाई दूसरी की आजकल तो तीन तीन फसल लेने को भी प्रयास करें,
0: करें
2: क्योंकि
0: बिल्कुल
2: आज की नेचुरल अभी जकी जकी खेती कर रहे हैं किसान,
0: प्राकृतिक
2: टेक्निक
0: खेती।
2: खेती, टेक्निक खेती जकी रासायनिक खेती आप कह सका, तो दो की जगह तीन फसलां लेने की भी कोशिश करे किसान भाई। पहले के टाइम के माँ के हों तो के कई किसान भाई तो एक ही फसल लेता पूरे साल के माँ, कोई हाड़ी की फसल बीजता, सावनी के माँ कोई ग्वार बीजता, या इस तरह की फसल बीजता जबकि मिट्टी की धरती की जमीन की उर्वरा शक्ति ने बढ़ाने वाली होती।
1: बिल्कुल
2: तो इन
1: साथ ही
0: हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल तो क्या आपने सियाणा मैंने के रहने का मत हम भूख मान रखी है, लालच जो को है वो बुरो है
2: लालच
0: हमेशा।
2: बुरी बला है,
0: हाँ
2: उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, वो रोड़ो चाल
0: सही
2: रही है
0: बात
2: वो
0: है।
2: कितनी मान लो खाद गाली आ
0: हाँ
2: यूरिया गाली के बीसू मैं डबल गाल सू,
0: हाँ जिद्दोजिद्द का मां की है
2: अच्छा
0: क्या
2: वो
0: धरती को भी
2: चाल
0: नाश
2: रही
0: कर
2: है।
0: रखे हैं।
1: नहीं डॉक्टर साहब एक बात बताओ थे जी, मान लो कोई किसान है बेंग मन में आ गई आज का मैं तो प्राकृतिक खेती करीशू, ठीक है, तो वो शुरुआत क्या करे के चीज करे। मान लो थे को जी एकर मान लो 2 बीघा में करनी है, अरे कणक ही करनी है अब कणे, तो वो कणक 2 बीघा में प्राकृतिक क्या कर सी थे, तो शुरुआत ले गए अंत तक को तरीको बता दो मान तो।
2: अब और बताऊं
1: हाँ
2: लेकिन पहली मैजिका प्रकृति

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे विरुद्ध कार्य कर रही है बा, बात अध बीच में रह गया।
1: बताओ तो पूरी बताओ तो
2: रेगी बाल है
0: पहली बताया पछे बिरो स्वाद आसी अगली
2: हाँ,
0: बात
2: हाँ, आन दो बात आन दो।
0: तो बात आ है कि आपा एक तो यांत्रिकरण बहुत कर दियो।
1: अच्छा
0: खेत ने जुताई करनो है या ट्रैक्टर चलावना है या और यंत्र चलावना।
3: अच्छा ज्यादा पहाड़ पाती करा बिना यांत्रिकरण बोले
0: बिना यांत्रिकरण बोले
3: ठीक है
2: अब तो समझ गया हो सिर्फ भाई।
3: हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब बताइए।
0: तो यांत्रिकरण करण सु कहीं है ज्यादा ट्रैक्टर चलावण सु कहीं है के अपने जमीन रे नीचे कहीं है के लाभदायक जीवाणु रेवे।
3: अच्छा
0: जहाँ केंचुआ रेवे लाभदायक जीवाणु रेवे तो बे कहीं है जहाँ मान लो आप दूध दही जमावा अगर आप बिने रात भर हिलाता रेवा तो कहीं दही जम जसी
2: नाम सफाई कौन जमे डॉक्टर साहब।
0: ई वास्ते के बे जिका जीवाणु है लाभदायक बे आपरी प्रक्रिया कर कौन सके बढ़न वाली और दही जमे कौन ई वास्ते बे लाभदायक जीवाणु ज्यादा यांत्रिकरण सु कम हो गया।
3: ठीक बात है।
0: दूसरो थे सुनियो वेला के खेतरी बाड़ रे ऊपर आप वानी की पौधा लगाऊता जहां मान लो खेजड़ी लगा दी ठीक है।

0: में डॉक्टर साहब, ई वास्ते के बे जिका जीवाणु है लाभदायक बे आपरी प्रक्रिया कर कौन सके बढ़न वाली और दही जमे कौन ही, ई वास्ते बे लाभदायक जीवाणु ज्यादा यांत्रिकरण सु कम हो गया।
1: ठीक बात है।
0: दूसरो थे सुनियो वेला के खेतरी बाड़ रे ऊपर आपा वानी की पौधा लगाऊं था, जहाँ मान लो खेजड़ी लगा दी, ठीक है, आपा मान लो शीशम लगा दियो, देसी किक्कर लगा दियो, बीसों काई फायदो हो तो
2: अच्छा
0: बताओ।
3: वो तो किया है कि एक तो आपने जगह छोटा मोटा कीटाणु विषाणु जगह होता अपन खाने के लिए, आपने पक्षी है गोलिया कागला जगह है
0: चिड़िया बैठती
3: तो भी वो बहुत फायदो हो तो डॉक्टर
0: बे लटिया ने खाती
3: हाँ
0: तो बे बैठनी बंद होगी। हाँ, आजकल कोई लगावे कोनी
3: बिल्कुल।
0: और दूसरो काई बात है, दूसरी बात आ है कि बीसू किसान ने एक पैदावार भी होती
3: होती,
0: जहाँ मान लो सांगरी लाग गई खेजड़ी रमाइने बिने बेच तो जन भी रे कहीं फायदो भी हो तो, जहाँ मान लो कोई लागत लागी है तो बिने 500 लाभ भी मिलते बीसू बेचण सु, तो ऐ सब फायदा खत्म हो गया। तीसरो जिको मृदा अपरदन हो तो, जहाँ मान लो तेज हवासू बा मिट्टी
3: कटाव हो जाऊ
0: कटाव हो तो या ज्यादा पानी आवण सु वो कटाव रोकण में भी बे सहयोग करता।
1: बिल्कुल
2: सही बात है।
0: तो ऐ सब चीजें खत्म होगी। इरे अलावा कई बात हुई, इरे अलावा आ बात हुई कि आपा है जिको मिश्रित खेती बंद कर दी।
2: अच्छा
0: मिश्रित खेती मतलब जहाँ मान लो कपास है अपना, कपास जी को है अपना क्या कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़
1: यानी
0: कपास ज्यादा है। अगर अपना कपास रह सागे मूंग भी बीजा तो मूंग का ही है कि वातावरण की नाइट्रोजन ने बार जिकी जड़ियां लेवे नाइट्रेट में परिवर्तित करे, तो अगर अपा मूंग और कपास सागे उगावा तो बे चीजें किसान भाई बंद कर दी।
1: बिल्कुल
3: बिल्कुल।
0: इरे अलावा कहीं है कि आपने जिकी मृदा आच्छादन करता, मृदा आच्छादन रो मतलब मल्चिंग, अंग्रेजी में कहे मल्चिंग।
3: हाँ,
0: मल्चिंग रो मतलब कहीं है कि आपा मल्चिंग कर दी फसल अवशेष ने, दो मान लो कतार है फसल री बीरे बीच में आपा फसल अवशेष ने तूड़ी सु ढक दियो।
2: अच्छा।
0: फसल अवशेष सु ढक दियो तो एक तो वो वाष्पीकरण सु जिको पानी उड़े बीरी बचत करे। इरे अलावा जी की खरपतवार बीच में उजवे, बा खरपतवार को नहीं हुए तो किसान ने कितो फायदो उसी। दूसरो फिर जब फसल काट ले सा जने बाज की आपा तूड़ी लगाई है बीच में, बे जी का जमीन रे नीचे लाभदायक जीवाणु है भी तूड़ी ने खासी, वो काम भी आपा बंद कर दियो। दूसरो आपा केवा गाय अपनी माता है लेकिन आपा गाय पालनो बंद कर दियो।
3: बिल्कुल।
0: एक ग्राम गाय रो जी को गोबर है बीरे मायने लगभग 300 देसी गाय रे गोबर में 300 करोड़ लाभदायक जीवाणु हुए,
3: जो का भी फायदेमंद है
0: गोमूत्र में और गोबर रे मायने देसी गाय री।
1: बिल्कुल बिल्कुल। पहला खेतों में खाद भी बहुत गेरता।
0: हाँ तो अगर आपा भी गोमूत्र रो और गाय रे गोबर रो प्रयोग कर सा तो आपने खेत ने फायदो उसी की नहीं, लाभदायक जीवाणु बढ़सी की नहीं
2: बढ़सी।
0: दूसरा मित्र कीट भी हुए और शत्रु कीट भी हुए तो आपा अगर रासायन रो प्रयोग कर सा कीट रे नियंत्रण वास्ते तो कहीं है कि सागे सागे बे मित्र कीट भी मर जसी।
1: बिल्कुल।
0: तो ईरे वास्ते आपा ने कोई इसी विद्या वे जिके सु मित्र कीट बचेड़ा रेवे और खाली शत्रु कीट मरे, ई वास्ते आपा जिका ट्रैप्स हुए बे जिका पीला ट्रैप हुए ठीक है, कई बे कीट हुए जिका लाइटू आकर्षित हुए प्रकाश पास लगा दियो, इसो काम करना चाहिए आपने। और आपा जिका प्राकृतिक खेती में नीम रे पत्ता रो नीमास्त्र और जिको दस परणी वे बीरो छिड़काव कर सा तो आपने कहीं है कि जिका हानिकारक कीट है वे भी खत्म उसी और फायदो उसी
3: आपने। कीट है बे सुरक्षित रहे,
0: बे सुरक्षित रहसी। और साथ ही आपा बीज रो प्रयोग करा जने आजकल कहीं कर लो होड़ किसान रे मायने अंधाधुंध होड़ होएगी कि मैं है जिकास ऐसा बीज प्रयोग कर सा जिका बे हाइब्रिड हुए बिया रे मायने अपने यूरिया भी ज्यादा गालनी पड़सी दुगनी गालनी पड़सी डीएपी भी दुगनी गालनी पड़सी तो बे कहीं कर सी अपने लाभदायक जीवाणुओं ने खत्म कर सी अपने मित्र का किसान का सच्चा मित्र केंचुआ भी ने कम कर सी।
3: बिल्कुल।
0: तो आपने कहीं फायदो उसी
1: तो डॉक्टर साहब
0: अपनी जमीन खराब उसी।
1: एक ही संदर्भ में ही आपना सुनने वाला है रमेश कुमार चक 6 MSR अनूपगढ़ से, एक वे के माने 3

0: साल हो गया मेज की गेहूं है बा बिना खाद वाली है बा बीजा, तो बिंगो उत्पादन बढ़ाने खातर या सरसों को, हाँ गेहूं को उत्पादन बढ़ाने खातर सरसों की खल एर जो हरा कशिश नाम कोई प्रोडक्ट आवे बाजार गए माँ वो वहाँ लिखे कि भाई ए में बिंगमा गेरन लाग रहे हैं, तो माने इंगमा और के रेड़नो चाहिए। एर मूंग की खेती भी हुई है बी जमीन गए माँ, एर भी जमीन में मेघवार की खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या मूंग की खेती कर सका, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो।
1: बीरे मायने ग्वार री खेती तो जरूर करो, मूंग
0: अच्छा
1: री खेती जरूर करो, और फसल चक्र ने अपनाओ। बार बार गेहूं री खेती एक ही जगह पर आप करसा तो बीरे मायने बीरा खरपतवार ज्यादा बढ़सी और वे विशेष प्रकार रा कीड़ा भी बढ़सी और धीरे धीरे थाने उत्पादन में कमी आसी और मृदारी उर्वरा शक्ति जी की है बा कम होसी।
2: बिल्कुल, आपने जी की माटी में कई जगह सूक्ष्म पोषक तत्व है डॉक्टर साहब, तो बे क्या क्या कई इसी फसल किस्मा जिकी है बे, कई बार उथली जड़ाली है, कई बार ऊपरली जिकी जड़ाली है, उंडी जड़ाली है, तो बहुत बहुत फर्क पड़े इस चीज को, है
3: हाँ,
2: ना।
3: तो मैं यहाँ कहूँ कि डॉक्टर साहब थे विशेषज्ञ हो, वैज्ञानिक भी हो और एग्रीकल्चर की थाने सारी जानकारी भी है, पर सागे मैंने वो ध्यान है कि थे गानों भी मधुर
0: सुनना
3: मधुर
0: चाहो,
3: गाया करो थे।
0: हाँ
2: अच्छा डॉक्टर साहब
0: अच्छा
2: तो फिर
0: सुनाना
2: गायन
0: चाहो
2: भी,
3: हाँ तो दो लाइन मारा श्रोता ने थे सुना दो,
2: बिल्कुल
3: कुछ
2: लाइन
3: बढ़िया
2: पे
3: से
2: डॉक्टर साहब।
1: है जरूर जरूर जरूर।
3: हाँ
1: आ अपने राजस्थान की धरती है नी,
3: हाँ
1: आ
3: हाँ
1: स्वर्ग सु भी सुंदर है,
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: और इरे ऊपर जी का यह धोरा है,
2: हाँ
1: अपने सूरतगढ़ में धोरा घना ही है,
2: हाँ हाँ
3: ऐसा
1: तो ऐ सोनेरे डूंगर वाली जिया चमके इपरी यो गीत है, दो लाइनें थे के वो तो
2: हाँ
1: सुनाऊं।
2: आन दो सर।

0: हाँ देखो
1: जिसोरोक रेडियो डाक
0: सारी बात एक साथ बता दी कैर आंख उतारो और सारी
2: तो
0: चीजें देखो
2: राजस्थान की मरुद्र है ना बिंगा श्रृंगार है मीन भाई श्रीपाल भाई
0: देखो कैर की जगी वो है नी बुंटो जी को भी मैं कितना ही पक्षी रहे
2: बिल्कुल
0: तो अपने संरक्षण करना चाहिए। देखो बातचीत बोली होगी मन लगा अपने जगह श्रोता भी रेडियो बंद कर देगा यहाँ करांगा तो है? एक गीत माने सुना दो तो रामेश्वर भाई है
2: बिल्कुल आन दो एक गीत आन दो

0: सफल गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल सुनियो गीत,
3: गीत बहुत ही फूट रो सा है।
2: गीत तो फूट रो।
3: श्रीपाल भाई जी, कोई सवाल आयडा है कोई श्रोतांगा तो पूछ ले। भी डॉक्टर साहब बैठे अभी से, तो देखो थोड़ा सा टेम रहे कौन ज्यादा है।
4: देखो सवाल तो बहुत सारा आयडा है, तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई थे कोई श्रोताओं ने बात ली कोई बतानी चाहो थारी तरफ से तो थे थारा सुझाव जरूर दो। एर कग दिया अपन सवाल लिख कर जेका भेजा है बंगा नामड़ा में थे कहो तो की अमरपुरा जालूखाट से जगदीश चंद्र प्रजापति एर आंगा साथी पूछे एर ओ जो कागद आपने ताई पूछो है जो सवाल लिखने वाला है नोर से नरेंद्र सुथार।
2: अच्छा अच्छा
4: पूछे के प्राकृतिक खेती में मैं सब्जियां की भी बिजाई कर सका के।
3: वो सवाल तो हो गया देखो आप।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: वो तो उतलो दे दियो डाल।
4: हनुमानगढ़ फाजिल का शू रमन वर्मा है ए भी प्राकृतिक के खेती के माँ सब्जियां के बारे में आपने पूछना चाहे एर इंगे सागे सागे वो सवाल जो है पपीते खातर एर सूरजमुखी खातर सवाल पूछे आपने चक 15 पिए छू सरवजीत सिंह जोशन ए दंतरेगी बाटापुरा छत्तीसगढ़ छू हीरामणि वर्मा ए भी आपने सवाल पूछे ऐसा तो डॉक्टर साहब कोई उथला दे।
3: डॉक्टर साहब आप मैं बताऊं थाने थे तो आप बात बता दो कि जैविक खेती तो सगला की सुनड़ी है ठीक है आन आपने किसान भाई ना आ चीज को सुन मारी कि जैविक और प्राकृतिक में के अंतर है और शुरू किया करे आ दो ही मिनट में बता दो अपने टाइम देखो कि तो कम रहे है मैंने।
2: हाँ
5: प्राकृतिक खेती जैविक खेतियों बिल्कुल अलग है क्योंकि जैविक खेती रे मायने आप गोबर री ज्यादा मात्रा रो प्रयोग करा जबकि आप प्राकृतिक खेती में किसान रे खेत रे मायने उपलब्ध जिका संसाधन है जहाँ गोमूत्र है गायरो देसी गायरो गोबर है ठीक है और आपने बेसन है ठीक है और जिको गुड़ है और बरगद रे पेड़ री मिट्टी वगैरह है वीरो प्रयोग करते हुए आप घन जीवामृत बीजामृत जीवामृत एवं मतलब नीमास्त्र 10 परणी रो घोल बनावा और बीरो प्रयोग करा तो बीसू कहीं है कि आप जहाँ थे बार पूछो कि गेहूं रे मायने कहीं आप कर सका तो बिल्कुल कर सका प्राकृतिक खेती से गेहूं रो उत्पादन बीरे मायने आप घन जीवामृत 10 कुंटल 1 हेक्टर रे मायने गाल सका।
3: अच्छा
5: ठीक है जीवामृत हरेक सिंचाई रे मायने 500 लीटर 1 हेक्टर रे मायने आप प्रयोग कर सका जीवामृत रो और ए सगड़ा जिका जीवामृत घन जीवामृत है गाय रे गोबर गोमूत्र सु बेसन सु और गुड़ सु बने।
3: रामेश्वर भाई मेरा फिर के बात सुन भाई क्या प्राकृतिक खेती में थाने बाजार हूँ ऑर्गेनिक भी कोई आइटम कौन लेगा सगलो जी को थारा खेत में नहीं वो ही थाना खेत में उपयोग करना है और खेत भी लेनो है
5: किस्मिया है स्थानीय जलवायु रे अनुकूल किस्मिया रो प्रयोग करना चाहिए
3: तो
5: राष्ट्रीय बीज निगम जी की है वो 1963 से आपने आई उपलब्ध करवाया
2: तो मोटी सी बात आई है कि आपने प्राकृतिक खेती का नहीं ध्यान देना चाहिए आपने कन आज टेम इतो ही है तो भाई लोगों लेवा गया और चलो
3: चलो सर राम राम
5: राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं।

गीत गाता चल। इस फिल्म का ये भक्ति गीत अभी आपने सुना। आइए सुने महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में फिल्म दाता का ये भक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रीपाल शर्मा का। जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गाइड के कुछ गीत। फिल्म गाइड सन 1965 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लेखक थे आर के नारायण, निर्माता थे देवानंद और निर्देशक थे विजय आनंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी गीत फिल्म के गीत से, लेकिन आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म के गीत। गाइड फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और साथियों की, गीत रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। साथियों, एक अभिनेता जिनको कौन नहीं जानता, अपने जीवन काल में 100 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले और फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देवानंद। फिल्म गाइड, जिसमें राजू गाइड के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, वहीं मिस नलिनी रोजी मार्को जिनकी भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान ने, राजू की मां लीला चिटनिस और राजू का दोस्त गफूर अनवर हुसैन, इन्होंने ये अभिनय किया था। राजू गाइड के मामा के रूप में उल्लास किरदार निभा रहे थे और गजानन जागीरदार जिन्होंने भोला के रूप में अभिनय किया था। साथी, फिल्म गाइड के सारे गीत एक से बढ़कर एक हिट हुए थे। इस फिल्म में संगीत दिया था ST बर्मन यानी सचिन देव बर्मन ने। संक्षेप में इस फिल्म की कहानी भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल, सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

सुतौ नवकेतन इंटरनेशनल मूवी के बैनर तले बनी फिल्म गाइड में गीतकार थे शैलेंद्र। ये गीत जो अभी आपने सुना, इसमें आवाजें दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्माया गया था देवानंद और वहीदा रहमान पर। गीतों में आवाज देने वाले कलाकार किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और एसडी बर्मन। फिल्म फेयर पुरस्कार की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार देवानंद को इस फिल्म में मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर का पुरस्कार मिला था वहीदा रहमान को। इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार विजय आनंद को और सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार आर के नारायण को मिला था। छायांकन के रूप में पुरस्कृत किया गया था फाली मिस्त्री को। संगीतकार के रूप में एसडी बर्मन को भी

सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और पार्श्व गायिका के रूप में लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। वो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

साथियों, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म गाइड के गीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। फिल्म के नाम के मुताबिक देवानंद, जो राजू गाइड के रूप में इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे, पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाकर अपना कमाई का जरिया उनका वही था। और एक दिन एक अमीर और बुजुर्ग पुरातत्वविद मार्को यानी किशोर साहू और उनकी युवा पत्नी रोजी

इस पर भी गांव वालों की राजू से आस्था कम नहीं होती और वो कुख्यात डाकू रत्नाकर का उदाहरण देते हैं और आगे चलकर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। अंततः राजू उपवास के लिए राजी हो जाता है और हालांकि उसे विश्वास नहीं होता कि मनुष्य के उपवास रखने से वर्षा और इससे कोई संबंध है, लेकिन उपवास के दौरान राजू का आध्यात्मिक विकास हो जाता है, उसकी ख्याति बढ़ने लग जाती है, हजारों की संख्या में दर्शनार्थी उससे आशीर्वाद लेने आने लगते हैं। उसकी ख्याति सुनकर रोजी और उसकी माँ और उसका दोस्त गफूर भी उनसे मिलने आता है। गफूर को बोला कि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते क्योंकि इसमें इनकी धार्मिक भावनाओं का मामला होता है। राजू मध्यस्थता करता है और इंसानियत को सबसे ऊपर दिखाता है, प्रेम और परोपकार ही धर्म है, ये चीज़ें सबको समझाता है। धीरे धीरे राजू की हालत नाजुक हो जाती है और आखिर में 12वें दिन संयोग से बारिश हो जाती है और उधर राजू का निधन हो जाता है। और जहाँ मंदिर के बाहर गाँव वाले खुशी से झूम रहे थे तो दूसरी ओर मंदिर के अंदर स्वजन उसकी मृत्यु का मातम बना रहे थे।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गाइड के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहनवाज खान और अर्जुनन रमन का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में गरिमा और दीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का महामुकाबला गुजरात टाइटन्स से। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी

सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में, और भारत ने एशिया ओशोनिया चैंपियनशिप का खिताब तीसरी बार जीता। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स से, जहां कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण तो किसी में रजत पदक अपने नाम किए। हांगकांग में चल रही एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर

0: प्रदर्शन जारी है। अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण तो किसी में रजत पदक अपने नाम किए। हांगकांग में चल रही एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए। इनमें 2 स्वर्ण 1 रजत पदक शामिल है। पुरुषों के हाई जंप में भारत के बसंत 2.20 की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों के लॉन्ग जंप में शहनवाज खान ने 7.84 मीटर की लंबी कूद के साथ स्वर्ण और इसी वर्ग में जिथिन अर्जुनन रमन चंद्रशेखरन ने 7.66 की कूद के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता में लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन जारी है, अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहां हाई जंप पर पूजा ने कल राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड को सुधार कर उसमें गोल्ड मेडल जीता था। वहीं उन्होंने सहाना कुमारी का नेशनल रिकॉर्ड भी कल अपने को तोड़ करके अपने नाम नया रिकॉर्ड कायम किया था। चलते हैं वियतनाम, जहां कुश्ती अंडर 17 का मुकाबला जारी है। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गरिमा और दीक्षा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं कैसा रहा कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: एशियाई अंडर 17 कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग श्रेणी में कई पदक अपने नाम किए। 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने मंगोलिया की नामुंत सेटसेक बेथबोल्ट को 18-6 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 43 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा ने उज्बेकिस्तान की मुखलिसा मशारी पोवा को 6-0 से हरा कर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। 40 किलोग्राम वर्ग में पलक ने चीन की मिन्या फांग को 6-2 से पटकनी देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 46 किलोग्राम वर्ग में अनामिका ने मंगोलिया की तनसर्मा बेटसूरी को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। 53 किलोग्राम वर्ग में अक्षरा ने वियतनाम की थी होई थू बुई को 10-0 से हराया। वहीं साक्षी ने कजाकिस्तान की एरिना कोनी सोवा को 10-0 से हराकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। 61 किलोग्राम वर्ग में मान्या राजपूत ने कजाकिस्तान की ही एगेरिम पोलटोबे को 10-0 से हराकर एक और कांस्य पदक भारत के लिए जीता। उधर पुरुषों के 71 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अनुज ने तुर्कमेनिस्तान के मेकान हुदे बेरेन को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं के टीम रैंकिंग में भारत पहले, वहीं पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, जहां निकिता ने 39 किलोग्राम वर्ग में और अंतरा ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। सीधे लिए चलते हैं आपको इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहां पर महिला क्रिकेट का T20 मुकाबला जारी है। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए हैं। भारत को इंग्लैंड ने 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवर में 38 रन दिए। नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। श्री चरणी ने 4 ओवर में 6.2 की इकोनॉमी रेट से 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर, श्रेयंका पाटिल ने वापसी भी की है और 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 60 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी थी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 69 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप से पहले ये श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आईसीसी विश्व कप जो है 12 जून से इंग्लैंड में ही खेला जाना है और भारतीय टीम इस श्रृंखला में अपने कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहेगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन है, वहीं गुजरात ने भी 2022 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं पूरे मैच का हाल।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज एक रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल भी 7 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की शानदार पारी खेली। वैभव ने अपनी

0: पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। हालांकि रविंद्र जडेजा 35 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में डोनोवन पेरेरा ने आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 345 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन लगाए। गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट लिए। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े। सुदर्शन 32 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। वहीं गिल ने 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने।
1: This is something else. It really is something else. What a 100, what a performance, leadership at its absolute best.
0: जॉश बटलर 9 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 गेंदों में 16 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार बने। राहुल तेवतिया 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे।
1: It's over now. Tabatia. And they'll march into Ahmedabad for the final against RCB.
0: शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अब गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था, जिन्होंने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 204 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। आईपीएल में महज तीसरा मौका रहा जब गुजरात टाइटंस ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज किया। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि फाइनल में हमारा पूरा ध्यान बेहतर क्रिकेट खेलने पर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में कल कौन सी टीम दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। एक तरफ जहां रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पाने के इरादे से उतरेगी, वहीं शुभमन गिल की लीडरशिप में गुजरात टाइटंस पहली बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां पर मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन आज दिखाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स फाइनल में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को जापान की सायका होबारा और युची शिमिगामी से हार का सामना करना पड़ा। इस जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 16-21, 21-17, 13-21 से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और अजस प्रणय और आज तनिषा क्रेस्टो और कपिला के बाहर होने के बाद अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें मेन्स डबल्स जोड़ी पर होंगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर, जहां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल ब्राजील के जुआओ फोनसेका ने नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। वहीं आज महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में अमांदा अनिसिमोवा और अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगी, जबकि इगा स्वायतिक पहले ही चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उलटफेर के इस दौर में कौन से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं।
3: फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। नोवाक जोकोविच से पहले यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फोनसेका ने लगभग 4 घंटे 53 मिनट तक चले बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच को पराजित किया। शुरुआती दोनों सेट जीतकर जोकोविच मैच पर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे। इस दौरान जोकोविच कई बार थके हुए और शारीरिक रूप से परेशान नजर आए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और निर्णायक पांचवें सेट की शुरुआत में 3-1 की अच्छी बढ़त बना ली थी। फोसेंका ने फिर से वापसी की। उन्होंने आखिरी 8 में से 6 गेम अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच को 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से पराजित किया। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंड्री रूबेल को हराने के बाद ये किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ फोसेंका की दूसरी जीत है। जोकोविच के खिलाफ अपने पहले टूर लेवल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले फोसेंका ने नया इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच को हराने वाले पहले युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। फोसेंका पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंचे हैं। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उनका मुकाबला 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट से होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: अभी हमें ताजा जानकारी मिली है सबालिंग

0: ने अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर ली, वहीं अनिसिमोवा को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने तीसरी बार जीता एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अल्ट्रा रनिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान के हिरोसाकी में हुई IAU एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 24 घंटे दौड़ में भारत ने इतिहास रच दिया है। टीम ने न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम किए बल्कि पूरे व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा जमाया। अमर सिंह देवंदा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। गिनो एंटनी ने रजत और सौरभ कुमार रंजन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये प्रदर्शन एशिया ओशिनिया स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा और किसी भी एशियाई देश का IAU चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जा रहा है। मुकाबले में जापान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में भारत ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। जापान ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारतीय महिला टीम की ओर से तेंजिन डोलमा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 228.939 किलोमीटर दौड़ लगाई और कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत ने 2022, 24 और अब 2026 में लगातार तीसरी बार 24 घंटे अल्ट्रा रनिंग एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: बात कर लेते महिला हॉकी पर। जापान के काकामिगाहारा में अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज शिलोंग के JN स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एकीकृत आतिथ्य और खेल परिसर का उद्घाटन किया। बात कर लेते तीरंदाजी पर। स्लोवानिया के खामनिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरुषों के रिकर्व वर्ग में भारत के सचिन गुप्ता फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका सामना कल कजाकिस्तान के इल्फत अब्दुलन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.aar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में DK शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे। और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
3: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो को

0: करणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की, तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR

0: AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या

नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गईं। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चंदन दास की गाई गजलें। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं इन्हीं की गाई एक और गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने चंदन दास की गाई गजलें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं।

ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी

0: पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है, समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई। एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना, और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही,

0: आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
1: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।

0: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ड्राइविंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
2: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
0: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की, स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली, तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट

0: कंटेंट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते. देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास. अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से. देखिए हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं. हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे. हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये.
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं.
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ. जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे. ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब. तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग. पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब. तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम. जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई. फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है.
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं.
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है. जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं. कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी.
3: हाँ. और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है. हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें. हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी. मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है. बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें.
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था. हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है. जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा. तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं.
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो.
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है. बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि अरे यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया. और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला. और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है.
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है. हाँ,
1: से एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल या चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए. पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है. अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है. तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब

0: ट्राइपॉड्स या उस तरह की चीजें आपको,
1: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
1: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
0: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने चार सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है। हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
1: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
3: जी,
4: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कॉम्पोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
3: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है, तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर

0: की बात करें
1: जी, देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय युवा पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम युवा भारती, जिसे हमने आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: We bring to you a classical vocal performance by Vidushi Smita Mukashi.
2: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
2: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: She has graced prestigious music festivals like the Tansen Samarov and Ustad Amir Khan Samarov, leaving an indelible mark with her singing from the Prayag Mahakumbh to the Nehru Center in London.
2: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: Honored with several accolades, including the Kalashree and Mohammad Rafi Awards, her performances are not only technically flawless, but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
2: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। The first is Vilambit composition set to Ektal with the lyrics

मान तज देहो प्यारे. दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा. शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है, वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क

आईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।